एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़

0: नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी में समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इस कार्यक्रम में लीजिए, पहले सुनिए देश वंदना समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देश वंदना। लीजिए अब सुनिए राम भजन, स्वर दिया है शर्मा बंधु ने।

शर्मा बंधु की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे राम भजन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन, जिसे गाया है हरी हरन ने।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और साथियों की आवाजों में एक और भजन।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में गाए इस भजन के साथ ही हमारी आज की आराधना यहीं पर संपन्न होती है। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात। विषय है हरी खाद का महत्व और लाभ। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अभिनव गौराहा।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। कुछ समय पहले आप मन चेत करे होहा, हमार प्रधानमंत्री जी मन कहिन कि अब हमन ला फॉस्फेट रूपी जिन खाद होते ओखर उपयोग मा कमी लाए के जरूरत है। ओ मन ईसन काबर कहिन, एला सोचे के जरूरत है। पहली अभी तो जिहा ले सब ला हमन

0: लाथन जेकर से डीएपी बनथे, हम ज्यादा मात्रा ला आयात करथन। लेकिन अभी के समय ऐसे है जब जिहा ले हमन लाथन ये सब जिनिस ला, वो सब जगह युद्ध के संकट के चलते हमन ललाय मा परेशानी हवा। दूसर, अगर हमन 10 साल 15 साल से डीएपी ला खेत में डारथन, अगर आप मन एमा विचार करिहा, एला आप मन अगर खोजिया, तो पाहा के अगर आप मन एक बोरी या दो बोरी साल में दो पेट डाला था, मतलब 3-4 बोरी एक एकड़ में, तो कतको कुंटल डीएपी आपके खेत में पड़े है, जरूरत है ओला घोरे के। सही बात है। आज बात करबो हरियर खातू के। इधर ही अगर सरकार है कहत है कि डीएपी या यूरिया ला कम डालना है, तो ओहा आप मन ला आप मन के ग्राम सेवक के माध्यम से हरियर खाद के बीजा भी पहुंचावा थे। वो कतका लाभकारी है आप मन नहीं जाना था। अभी अगर पानी गिरा थे या अगर आप मन सो सिंचाई के साधन है, तो जिन एक पैकेट आप मन ला 12 किलो मा 8 किलो ढेंचा के बीज और 4 किलो मूंग के बीज के व्यवस्था मिला थे, ओला एक एकड़ में छींच देवा। 40-45 दिन बाद जब हम रोपाई करबो धान के, अतका जल्दी तो करी नहीं, काबर अभी किसान भाई मन धान के थरहा नहीं लगाए हैं, थरहा नहीं दिए हैं। जब वो 40-45 दिन के हो जाही, तो वो रोटावेटर चला के पानी से भर देबो, तो अतका सुघर बढ़िया खाद बन जाही, झन पूछा। अब आप मन ला हरियर खाद के व्यवस्था के जानकारी देहो कि कैसे यह लाभदायक है। हरियर खाद ला जब हम लगाबो, या कोनो भी दलहनी फसल के बात करी या चना के बात करी, ओला मन खोदबो, जरई में देखबो छोट छोट गोलवा गोलवा जिनिस रही थे, वो है राइजोबियम। वो का करते, वायुमंडल में सबले ज्यादा नाइट्रोजन होते 78%, ओला खींच के सोखते और भूया मोहा प्राकृतिक रूप से देते। तो ये ढेंचा फसल का करते या हरियर खाद का करते, जब हम इला लगा था ना, खातु डाले की जरूरत है ना कुछ जीनिस डाले की जरूरत है, बस छींच देवा एक पे खुर्रा बोनी करके, मतलब पानी पलो देना है। जब पहली पानी गिरीस तो छींच देवा, माड़ी अतका या जांग अतका बड़ होइस तोला फूल आए से पहले जोत देना है खेत में। वायुमंडल से नत्र जनला हमर भूया मा यह बैठाते, जौन है यूरिया के काम करते। यूरिया से हमन ला का मिलते, नत्रजन मतलब नाइट्रोजन मिलते, और नाइट्रोजन जौन है फसल के बढ़वार मा बड़ उपयोगी है। तो आप मन इधर ही कम से कम 2 या 3 एकड़ मा एकर उपयोग करा। खाली भूमि हो ही तो ढेंचा के बीज है छत्तीसगढ़ में, खास कर आप मन ला बता दो, ढेंचा के बीज आसानी से नहीं मिले, यह बाहर राज्य ले ला मंगाए गए, आयात करे गए हमारे राज्य में, गुजरात ले आते, उत्तर प्रदेश ले आते, दूसर राज्य ले आते। काबर यहाँ के किसान मन अतका ज्यादा हरियर खाद के प्रति जागरूक नहीं है। 100% में बात करो तो 10% या 5% लोगन एकर बारे में जानकारी जानते। हाँ, जिन बाहर ले अवैया कृषक है, जिन यहाँ ले के जमीन ला खेती करत है, ओमन एकर बारे में भली भांति जानते। एकाक एकड़ दू एकड़ में आपन एकर व्यवस्था करो, जिन खाली जमीन है ओमा एला छींच देवा, तो आपन बीज निकाल सकत है। एकर बीज है 200-250 रुपये किलो में बेचाते, तो यह बड़ उपयोगी हरियर खाद है, एकर लाभ लेवा, अपन खेत ला समृद्ध बनावा। राम राम, जय जोहार।
1: हरी खाद का महत्व और लाभ, इस विषय पर खेती की बात आप तक पहुंची। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान। स्वर दिया है भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह ने, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिनें 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

0: अभी रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। स्वर दिया था भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह ने। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन। विषय है आज का, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आलेख है श्री सीपी तिवारी की।
1: हैं श्री राघव जी, सज्जन हैं, समझदार हैं, भोले भाले हैं। उनका एक लड़का है, उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और वो आजकल बाहर नौकरी कर रहा है। बीच बीच में उनका लड़का अपने पिताजी को पत्र लिखता है। क्योंकि श्री राघव जी निरक्षर हैं, इसलिए वे पत्र मुझसे पढ़वाते हैं और आश्वस्त हो जाते हैं। एक बार मैंने उनसे कहा, आप 2-4 अक्षर पढ़ क्यों नहीं लेते राघव जी? तो वे बोले, अभी इस उम्र में क्या पढ़ना लिखना भाई साहब, अभी मैं 55 से ऊपर का हो रहा हूँ। मैंने कहा, पढ़ने लिखने और सीखने में क्या 55 और क्या 55? सीखने की कोई

0: उम्र निर्धारित नहीं होती। आप कोशिश करके तो देखिए, आप रोज शाम को कभी भी घंटे आधे घंटे मेरे पास बैठा करें, मैं आपको अक्षर ज्ञान करवाऊंगा। सचमुच मेरा यह कथन और आश्वासन अमृत का काम कर गया। वे रोज आने लगे। साल के आखिर आखिर में उन्होंने बड़े अक्षरों वाली पुस्तक पढ़ना सीख ली। अब राघव जी अखबार भी पढ़ लेते हैं, बच्चे का प्रेषित पत्र खुद बांच लेते हैं, उन्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। इस छोटी सी आप बीती को सुनाने का प्रयोजन यही है कि यदि ललक, लगन और उत्साह हो तो कभी भी किसी भी समय कोई भी कार्य सीखा जा सकता है। जाने अनजाने तो हम सीखते ही रहते हैं, लेकिन उसमें समझ और क्रियाशीलता और जुड़ जाए तो वो सीखना स्थायी होता है। झिझक, संकोच और हीनता सीखने में बाधक है, उन्हें दूर करना चाहिए। प्रायः अधिकांश सेवानिवृत्त व्यक्ति यही कहते पाए गए कि अब क्या करना, जो कुछ करना था हो तो कर लिए, जबकि ऐसा नहीं है। महान साहित्यकार श्री वृंदावन लाल वर्मा की यह उक्ति यहाँ प्रासंगिक है कि काम करने वाला व्यक्ति मरने के कुछ घंटे पूर्व ही बूढ़ा होता है। सीखने में रुचि हो तो कार्य में गतिशीलता आएगी, आलस्य दूर होगा। सीखने के लिए कोई समय सीमा नहीं, सीखने के लिए कोई जगह बाधित नहीं और सीखने के लिए किसी व्यक्ति से परहेज नहीं। कचरा दान में पड़ा स्वर्ण स्वर्ण ही रहेगा। पुराणों में दत्तात्रेय द्वारा 24 गुरु बनाने की कथा मिलती है। ये 24 गुरु कौन है? वही जिनसे कोई नई और अच्छी चीज सीखने को मिले, कोई नया ज्ञान मिला, कोई नया अनुभव मिला। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीखना आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु पर्यंत। बल्कि जन्म से पहले माँ के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ हो जाता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह मेदन का कौशल गर्भ में ही सीखा था। इसी तारतम्य में यहाँ एक छोटा सा आख्यान संदर्भित है। प्रव्रजन के समय महात्मा बुद्ध लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे, तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर भी दिया करते थे, लेकिन सारगर्भित प्रश्न यदा कदा ही प्राप्त होते थे। ऐसे ही एक महिला उनके पास आई, उनकी गोद में एक बालक भी था। उन्होंने महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया कि महात्मन, मैं इस बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ करूं? बड़ा सार्थक प्रश्न था। बुद्ध ने पलट कर उस महिला से प्रति प्रश्न किया, इस बच्चे की उम्र क्या है? 4 साल, महिला ने जवाब दिया। तुरंत महात्मा बुद्ध बोले, तब तो देवी जी आप इस बच्चे को शिक्षा देने में 4 साल और 10 महीने पीछे रह गईं। अभिप्राय ये कि हम अनवरत सीखते रहें ताकि हम में जीवंतता बनी रहे अंत तक। एक बात और, सीखने के प्रति लापरवाही अकर्मण्यता है। ऐसा व्यक्ति सृजनात्मक कार्यों से वंचित रह जाता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ही नहीं पाता। जीवन में प्रयोग का अत्यधिक महत्व है। न्यूटन के अनुसार जिंदगी में कभी प्रयोगों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विकास के बीज प्रयोग में ही होते हैं। लेकिन जो सीखना ही नहीं चाहता वो क्या प्रयोग करेगा? ऐसी मानसिकता से परे रहना आवश्यक है।
1: सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:50 होने वाले हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आज सुबह प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम का समय होता है 7:05 पर। कार्यक्रम सदाबहार नगमे सुनिएगा 7:30 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकते हैं आज 10:00। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि 9:55 पर और 11:55 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ हम रिले करेंगे दिन के 2:00 आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 2:15 से शाम 4:00 तक आप सुन सकते हैं विविध भारती

श्रोताओं, अब एक नज़र शाम को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज 7:10 पर। विषय होगा साइंस एंड टेक। शाम 5:05 पर किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज की बात के तहत विषय है धान की बुआई कतारों से करें। इसी कार्यक्रम में आज डॉक्टर परमेंद्र कुमार केशरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा श्रोताओं से पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। विषय होगा धान फसल में नील हरित काई एवं भूरा खाद का उपयोग। कार्यक्रम का संचालन करेंगे जीवन भैया। महिला सभा हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:35 पर। इसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा रक्तदान से बढ़े जीवन का सम्मान, और क्रम में होगा कौशल विकास। इस क्रम में आप सुनिएगा मोना केवट से बातचीत। 7:45 का समय होगा चित्रपट संगीत का। चिट्ठी मिली का प्रसारण किया जाएगा रात 8:00 और 8:20 पर आप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:20 पर, और इसका शेष भाग आप सुन सकते हैं शाम 7:00। श्रोताओं, 6:10 पर शाम को छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार, और शाम 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आज दिन के 10:00 फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद हम आपके लिए लेकर आएंगे, और कार्यक्रम में तराने का प्रसारण समय होगा 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: व्याप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्यपरिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य चत्वारिंशदधिकैकशत कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 वर्षस्य अथ च 25-2000 वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का

0: गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी संस्कृत और हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह में। स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार। मुस्कुराइए और थाम लीजिए उम्मीदों का हाथ, क्योंकि एक खूबसूरत और नई सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है।

श्रोताओं, कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और जो खेलोगे कूदोगे तो रचोगे इतिहास। कार्यक्रम आज सुबह में पहले हम चर्चा करेंगे श्रोताओं खेल यानी कि स्पोर्ट्स की, जो हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे जीने के अंदाज को भी बदल देता है। आज के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के खेलने के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया, ताकि हर बच्चा खेल सके। श्रोताओं, हम में से कई लोगों ने घर के अंदर भी ताश, लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी जैसे कई खेल खेले होंगे। मैदान में बाहर पहले पकड़म पकड़ाई, लुका छिपी, कंचे पिट्ठुल भी खेले जाते थे। जिन लोगों ने इस तरह के खेल खेलने का अनुभव करा होगा, वे सब इन बातों को याद करते हुए उस दौर में चले जाते हैं। श्रोताओं, आजकल बच्चों का अधिकांश समय घर के अंदर ही मोबाइल में, कंप्यूटर में बैठे बैठे कई तरह के खेल खेलने में पूरा समय निकल जाता है, जिससे उनमें शारीरिक श्रम की कमी हो रही है, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। मोटापे की बीमारी के साथ साथ आंखों में भी असर देखने को मिलता है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकालकर मैदान में उनके साथ जाकर उन्हें बाहर खेलने दें। श्रोताओं, दौड़ने भागने से बच्चों की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। खेल से बेहतर कोई दवा है ही नहीं। खेलने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही सही रहता है। जब बच्चा अपने शहर से बाहर या देश से बाहर जाकर खेलता है, तो वहाँ पर उसकी कई लोगों से जान पहचान बढ़ती है, उसके नए नए मित्र बनते हैं, उसे वहाँ की संस्कृति, पहनावा, खान पान, भाषा और रहन सहन के बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चा आत्मनिर्भर बनना सीखता है और दूसरों के साथ घुल मिलकर एडजस्ट करना भी सीखता है। श्रोताओं, एक खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो जीत उसकी जिद की होती है। ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, विराट कोहली, एमएस धोनी और बहुत सारे खिलाड़ियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर इरादा पक्का है तो जीत आपकी ही होगी। खेल के मैदान में सब बराबर होते हैं श्रोताओं, वहां पर जात पात, अमीर गरीब का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। खेल वो पुल है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। श्रोताओं, खुद को गतिमान रखिए, खेल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करिए। चलिए, इस विषय पर अपनी चर्चा मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं ये गीत।

श्रोता, इस गीत के बाद स्वागत आप सभी का कार्यक्रम आज सुबह में। और अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम

0: प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केशरी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में नील हरित काई एवं भूरा खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। और फोन लगाने से पहले श्रोताओं, बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 लगाना ना भूलें। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 11 जून 2026 और 12 जून 2026 को शाम 5:05 से 5:35 तक आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, प्रसारण का समय होगा 5:05 से 5:35 तक। सूचना समाप्त हुई और अब आइए सुन लेते हैं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था।
1: स्वीकार कीजिए नमस्कार उमाशंकर पांडे का और लीजिए सुनिए अपने शहर की, अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर में। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। आज पुनः बिलासपुर शहर में परीक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। वस्तुतः आज छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के तत्वावधान में बीएड एवं बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई है। शहर के 41 परीक्षा केंद्रों में होने वाली इस परीक्षा में 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। सभी को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं। सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है परीक्षा के प्रति गंभीर रहें, सतर्क रहें तथा अपने घर से परीक्षा केंद्र के लिए कुछ जल्दी ही निकले, क्योंकि कभी कभी ओवरब्रिज आदि स्थानों में किसी विषम स्थिति के आ जाने से कई बार यातायात बाधित होता है या यातायात की गति मंद हो जाती है, तब परीक्षा में समय पर पहुंचने में संशय की स्थिति बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार परीक्षा के समाप्त होने पर एकाएक सड़कों में विभिन्न वाहनों से परीक्षार्थियों के बड़ी तादाद में सड़कों में आ जाने से तब भी सुगम यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में सड़क में कतार में चलें, धैर्य रखें, ओवरटेक तो बिल्कुल न करें अन्यथा जाम लगते देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, सड़क दुर्घटना के शिकार तो लगभग सभी प्रकार के वाहन होते हैं, किंतु इनमें दो पहिया वाहन सवारों की संख्या हमेशा सर्वाधिक होती है और वह अधिकांशतः स्वयं की चूक, लापरवाही या सुरक्षा मानकों का उपयोग न करने से। कई बार किसी दो पहिया वाहन के खराब हो जाने से चार पहिया वाहन की तरह दूसरे दो पहिया वाहन से टोचन कर ले जाते देखा जाता है, यह घातक हो सकता है। वैसे ही पेट्रोल समाप्त होने पर अपने सामने चल रहे दो पहिया वाहन चालक का हाथ पकड़कर वाहन सहित जाते दिखाई देते हैं, यह भी खतरे से खाली नहीं है। ये वाहन सिर्फ दो लोगों के लिए ही है, किंतु कई बार घर के 5-5, 6-6 लोग इसमें बैठकर जाते हैं, यह भी खतरे की घंटी है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये तो थी श्रोताओं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार

0: सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आज सुबह में आइए सुनते हैं एक और सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। पूरी जानकारी आप राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, आज हम एक ऐसे वीर जवान को याद करेंगे अपने इस कार्यक्रम में जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए जान दे दी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। 11 जून सन 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे वे सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं थे, बल्कि वे एक कवि, लेखक और शायर भी थे। वो बिस्मिल, राम और अज्ञात के नाम से कविताएं लिखते थे। उन्होंने देश को जगाने के लिए हथियार भी उठाए और कलम भी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब बिस्मिल जी जेल की कोठरी में इस तराने को गाते थे तो बाकी कैदियों में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का नया जोश भर जाता था। वो अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंग्रेजों की सरकारी तिजोरी को ही लूटने की योजना बनाई, जिसे हम इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। इस घटना से अंग्रेज सरकार इतना डर गई कि उसने बिस्मिल जी को गिरफ्तार कर लिया और मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। वे हंसते हंसते अपने देश के लिए शहीद हो गए। श्रोताओं, आज ऐसे कई महान क्रांतिकारी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन सभी का त्याग हमें हमेशा सिखाता रहेगा कि आज़ादी की कीमत क्या है। भारत माता के इन सभी सच्चे सपूतों को हमारा सादर नमन।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कार्यक्रम का पहला तराना आप तक पहुंचा सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, नीति मोहन की आवाज़ों में। फिल्म का नाम चेन्नई एक्सप्रेस, संगीत विशाल शेखर का था और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का दूसरा तराना। फिल्म का नाम है जब वी मेट। मोहित चौहान ने

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे टू स्टेट्स। इस फिल्म में आइए सुनते हैं बेनी दयाल को। अमिताभ भट्टाचार्य के शब्द पर धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

दिल्ली सिक्स, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर दिया था मोहित चौहान ने, प्रसून जोशी के शब्द पर संगीत इरशाद कामिल का था। और अब कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है ओम शांति ओम। शान उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना की आवाज़ें, विशाल शेखर ने धुन बनाई है, रचनाकार है जावेद अख्तर।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी

0: मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको

0: 5 5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में

0: आयोजित किया जाएगा।
1: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
4: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling, and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत आइए सुनते हैं दुखीराम मरकाम और उषा और केरा की आवाज़ों में। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हरदेवलाल पारा वार्ड सिमका से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी कोमल यादव, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरिंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शिवाजी चौक राजिम से आप हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा दिव्यांश, आरोही और लबी श्रीवास्तव।

का, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं। टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजा है शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइशी लोकगीत आप सुन रहे थे दुखी राम मरकाम और उषा उर्केरा की आवाज़ों में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर परमेंद्र कुमार केशरी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में नील हरितकाई एवं भूरा खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 266592। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 11 जून 2026 और 12 जून 2026 को शाम 5:05 से 5:35 तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का अगला

फरमाइशी लोकगीत आप तक पहुंच रहा है गोरीलाल बर्मन और साथी के स्वर में। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवा राम वर्मा, सूरज नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू भाटापारा से ही आप हैं, सियाराम, अश्विनी पांडे, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ। इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला है बेमितरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ से आप नवागढ़ कटई से आप हैं, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, ग्राम बेलर गांव से आप हैं, मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, दत्रेंगी भाटापारा से आप हैं, नुखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, पत्रों पर आधारित छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए अब सुनते हैं भीम यादव और रेखा यादव की आवाजों में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता मित्र हैं बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त, बमलेश्वरी धाम साकरा सोमनी राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी, दिवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और इनके साथी, भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत।

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। श्रोताओं, यह है कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत। नैला बुड़सरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार तिवारी, मीनाक्षी तिवारी, उमाबाई तिवारी, अंजुलता तिवारी, विष्णु प्रसाद तिवारी, मोंगरा देवी मिश्रा, प्यारे लाल मिश्रा और इनके साथ ही ग्राम रसेड़ा कलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या कुमार, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु डॉली और पूर्वेश साहू, दत्रेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, दशरथ प्रसाद यदु, मनोज कुमार साहू, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या और कुमारी तानिया रजक। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं संतोष शुक्ला और साथी के स्वर में ये गीत।

संतोष शुक्ला और साथी की आवाज़ों में गाए इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत के साथ ही आज का छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब से लेकर 9:55 तक आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो और रूप कुमार राठौर की आवाज में सुन रहे थे वीर फिल्म से आप ये गाना, गुलजार के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

जारा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल संजीव कोहली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अनवर फिल्म से, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में सईद कादरी के बोल, म्यूजिक है मिथुन का।

0: अनवर फिल्म से आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है रूप कुमार राठौर पर, तो जानिए इनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से इस कार्यक्रम के बाद, यानी 9:30 पर, जिसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9:30 पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्लेबैक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गौले टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशियनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी rather than

गॉसिप तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज, जो तबले की जो पहली आवाज या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पे डाला कि अगर मैं रो रहा हूं और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, एक 102 103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए, और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी, और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा, और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे, और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से

मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई। ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: मुंबई में, और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: ज़माना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: अभी विविध भारती सेवा के प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विश्वेश्वर साय ने श्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष जनजाति समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्ण काल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या पर निर्णायक नियंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों और प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह पुनर्संरचना शैक्षणिक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए की गई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और

विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले दो दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहुंच सकता है। इस बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। दिन के 10 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद का पहला गाना ये सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के शब्द हैं, SD बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम है जुगनू। किशोर कुमार की आवाज़ और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, हरदेवलाल पारावार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, बिस्क, जयतेग, बिरक और मीका, हथनीपारा भाटापारा से आप हैं दुर्गा, दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा।

अगर मुझसे ना मिली सपनों में आके सारी रात जगाऊं तेरा पीछा ना ना छो

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। खामोशी द म्यूजिकल, इस फिल्म में आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू को। मजरू सुल्तानपुरी के शब्द, जतिन ललित का संगीत। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता मित्रों के नाम हैं शिवाजी चौक राजिम से, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा दिव्यांश और लबी श्रीवास्तव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी। नवगढ़ कटेई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बेमितरा से ही आप हैं सुरेश और पूर्णिमा। शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आइए सुनते हैं सिर्फ तुम, इस फिल्म का ये गाना। इस फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है उदित नारायण की आवाज में, रचना समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण और फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता साथी छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और इनके सभी साथी, बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से आप हैं नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, मास्टर रुद्रांश प्रताप साहू, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुरजिला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या रजक, कुमारी टानिया रजक, दतरेंगी भाटापारा से आप हैं नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण

मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

डुप्लीकेट इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में, जावेद अख्तर का लिखा ये गीत और अनु मलिक ने धुन बनाई थी। इस गीत के लिए हमें इन श्रोता मित्रों के पत्र मिले हैं, बाजार पारा बेमेतरा से भरत भाई लाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुकेश कुमार साहू, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी, शुभम सौरभ रावत, जिला दुर्ग से आप हैं चंद्र किरण, प्रीति छाया और इनके साथी, धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से आप हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका नामिका बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी प्रवीण साहू और सीएल यादव ने इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजा था। नैला बोरसरा जांजगीर से आप हैं हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार तिवारी, मीनाक्षी तिवारी, उमाबाई तिवारी, अंजुलता तिवारी इनकी साथी, विष्णु प्रसाद तिवारी, मोगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नए तराने।

कार्यक्रम का पहला तराना अब तक पहुंच रहा है अरिजीत सिंह की आवाज में। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत और फिल्म का नाम जब हेरी मेट सेजल।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। आइए अब सुनते हैं कलंक फिल्म का ये तराना। नीति मोहन और अरिजीत सिंह की आवाजें हैं, प्रीतम ने संगीत दिया है और रचना अमिताभ भट्टाचार्य की।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: रुस्तम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अतीफ असलम की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ ये गीत था और आर्को ने धुन बनाई थी। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लीजिए सुनिए ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: स्वीकार कीजिए नमस्कार उमाशंकर पांडे का और लीजिए सुनिए अपने शहर की अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। दैनिक प्रसूति ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर में कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। आज पुनः बिलासपुर शहर में परीक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। वस्तुतः आज छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के तत्वावधान में बीएड एवं बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई है। शहर के 41 परीक्षा केंद्रों में होने वाली इस परीक्षा में 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। सभी को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं। सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है परीक्षा के प्रति गंभीर रहें, सतर्क रहें तथा अपने घर से परीक्षा केंद्र के लिए कुछ जल्दी ही निकलें, क्योंकि कभी कभी ओवरब्रिज आदि स्थानों में किसी विषम स्थिति के आ जाने से कई बार यातायात बाधित होता है या यातायात की गति मंद हो जाती है, तब परीक्षा में समय पर पहुंचने में संशय की स्थिति बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार परीक्षा के समाप्त होने पर एकाएक सड़कों में विभिन्न वाहनों से परीक्षार्थियों के बड़ी तादाद में सड़कों में आ जाने से तब भी सुगम यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में

0: सड़क में कतार में चलें, धैर्य रखें, ओवरटेक तो बिल्कुल ना करें, अन्यथा जाम लगते देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, सड़क दुर्घटना के शिकार तो लगभग सभी प्रकार के वाहन होते हैं, किंतु इनमें दो पहिया वाहन सवारों की संख्या हमेशा सर्वाधिक होती है और वह अधिकांशतः स्वयं की चूक, लापरवाही या सुरक्षा मानकों का उपयोग ना करने से। कई बार किसी दो पहिया वाहन के खराब हो जाने से चार पहिया वाहन की तरह दूसरे दो पहिया वाहन से टोचन कर ले जाते देखा जाता है, यह घातक हो सकता है। वैसे ही पेट्रोल समाप्त होने पर अपने सामने चल रहे दो पहिया वाहन चालक का हाथ पकड़कर वाहन सहित जाते दिखाई देते हैं, यह भी खतरे से खाली नहीं है। ये वाहन सिर्फ दो लोगों के लिए ही है, किंतु कई बार घर के पांच पांच छह छह लोग इसमें बैठकर जाते हैं, यह भी खतरे की घंटी है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये तो थी श्रोताओं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम नए तराने के अगले गीत की ओर। भारत फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, विशाल शेखर का संगीत है और इरशाद कामिल ने इसे लिखा है।

भारत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में। संगीतकार विशाल शेखर और गीत लिखा था इरशाद कामिल ने। और अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति कनिका कपूर और मीत ब्रदर्स की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है कुमार ने, संगीत मीत ब्रदर्स का और फिल्म का नाम है रॉय।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नैता रानी, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60

0: 8 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन रामकृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए।

0: अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस।
1: ओ,
0: ये 5ों इंद्रियों दृश्य,

0: श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,

मेले की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हां मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जा रहा था। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 11:30 होने वाले हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चमन सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत।

0: विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद

मोहिनुद्दीन का कलाम आपने सुना, खय्याम की तर्ज थी, लता मंगेशकर, तलत अजीज की आवाजें थी, बाजार फिल्म की यह गजल आप सुन रहे थे।

0: तर्ज आवाज और गीत रचना है सुखविंदर सिंह की, नशा ही नशा है इस एल्बम का गीत आप सुन रहे हैं।
1: मोहब्बत मोहब्बत
2: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 11:55 हुए हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
3: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राज्य व क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नवा रायपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्य योजना तैयार करेगी। उन्होंने यूएनडीपी को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतरजिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार है। आरोपी जमीन में दबा खजाना मिलने की कहानी सुनाकर नकली सोने के बिस्किट और सिक्के असली बताकर सस्ते दाम में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, 1 नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए हैं। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन संभाग कुछ जिलों में तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। केशकाल घाट के 7वें मोड़ पर एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण केशकाल घाट पर मेगा जाम लग गया है। घाट के दोनों ओर वाहनों की लंबी हुई है, आवागमन प्रभावित हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए देश भर के रेलवे स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित

0: स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, जिसे हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं। अब से लेकर 2 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 2 बजे दीदी के गोठ, ये प्रायोजित कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 2:15 से 4 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे और शाम 4 बजे से 5 बजे तक संदेश टू सोल्जर्स हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर

0: विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: मदन मोहन का सर्वद किया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
3: सखी सहेली।

0: शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया राजा और रंग फिल्म से। आनंद बख्शी की रचना है।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने। अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते।

लता फिल्म का दो गाना आपने सुना, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज से और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल लुधियानवी की बोल।

गुजरना जाए घड़ियां, टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां, हाय टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थे जवानी।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहाँ जहाँ हैं विविध भारती साथ साथ है, और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना, और उन बातों उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है, और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai, और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया, कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ, याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा, इसी पनघट पर जब बातें होती थीं, एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं, एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए, और मन गांव में बस गया, शहर में कमरे ज्यादा हैं, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं, शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं, सुनो चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चलें जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, आज का टेक्स्ट, और अब आपको शब्दों को ढूंढना है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तो शब्द पहचान लिए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में भी लिखा है, तो देखते हैं कि आज कौन से गीत शामिल होते हैं।

श्रोताओ, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारें नजर आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहाँ बचपन की यादें, गाँव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी

में घर बनाए हुए हैं और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, सब तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आजादी वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ चपाकचई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओ, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें जरूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो? तो आप जरूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद के चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं तो हमें जरूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। और गाँव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गाँव में जो यादें हैं, रहत का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीना तमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताजा मिलेगी, ताजी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाजें अब भी दुनिया में नहीं, पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रख कर कह रही हूं अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ मिलाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट, पगडंडी, खेत, खलिहान, नदी, झरने, रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से। और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थीं। अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है। मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है। गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है। सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है। और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती है कि गांव की अनमोल यादें ताजा हो रही हैं, इस इबारत में गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात 10 तक यादें, भोर पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव, जी हाँ, और गीत भी बताएं। नाव की अगर कोई सैर आपको याद हो तो

नया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओ। गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा। गांव में अपनापन होता है, वही शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं, और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं, तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गईं, और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना, और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है।

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है, वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गाँव का नाम ठोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए

ये बचपन से जोड़े रखते हैं, जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गांव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं, लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता, मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गाँव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने रुला दिया वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने 8 गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर

पनघट में। जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए हमारे। मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है? क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन की जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: खातिया बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे।
1: खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवी गली।

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसी उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार।

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांद दूध जो नर्मदा नदी पर बसा है वहाँ दर्शन करने गई थी। वहाँ नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूँ।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओ, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीज़ों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता है।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

0: मिलखा, अब तू भाग मिलखा।
1: अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेल

चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चे के साथ बच्चा बनने से उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

मैंने नहीं तो

हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,

0: सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहल न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य

0: भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं।

0: आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी एम जी हर्षपत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो आज
1: हम खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
1: इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है।
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर, मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के इसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
2: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है
1: जी
0: और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया,
1: जी
0: जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है, कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानियों को अच्छे से समझाया जा सके। हाँ
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, उसी
0: जी
1: तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं।
1: जी
0: और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांव तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ की लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया, कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गोम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
0: और

0: ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है, उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलु गुम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलु गुम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले कैथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या-क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी
0: और एक
1: बिल्कुल,
0: गीत सुन लें अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती थी ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो देखने में बड़ा मजा
1: बिल्कुल।
0: आता
1: अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली

0: का खेल दिखाया जाता था, जैसे आपने बोला वो बोल रही
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
0: बिल्कुल,
1: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रखे रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
0: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने की, खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
1: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
0: बिल्कुल, वो
1: करना
0: जिस
1: बहुत
0: तरीके
1: जरूरी
0: खेल
1: है।
0: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
1: जी
0: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं, और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है, और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
1: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल।
1: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने के जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं। और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
0: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना, कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से
1: जी।
0: उनका विकास होगा।
1: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं, या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी
0: बिल्कुल,
1: खेले होंगे,
0: दौड़ भाग है,
1: भाग
0: साइकिल
1: दौड़ के।
0: चलाना है, बहुत
1: हाँ,
0: सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: लुका छिपी भी
0: लुका छिपी
1: खेलते
0: खेलते
1: थे,
0: थे।
1: और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा किए,
0: हाँ।
1: सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की एक गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं उन
0: बिल्कुल, बहुत
1: पत्थरों
0: से
1: के
0: ऐसे
1: टुकड़ों
0: खेल
1: को।
0: हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और
1: जी
0: जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दीन दुनिया की खबर नहीं रहती है।
1: जी
0: तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर। तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है, और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकल कर खेलना।
1: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर बात
0: बिल्कुल
1: को आगे
0: सुनते हैं।
1: बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में
1: और
0: बड़ी
1: मजा आता
0: रुचि रहती है। तो
1: है।
0: देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचे कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही
1: हम
0: बात
1: भी
0: है।
1: अपने
0: और
1: बचपन
0: इस
1: में पहुंच
0: साल
1: जाते हैं।
0: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल
1: बिल्कुल
0: खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं,
0: जी
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है।
1: सुरक्षित नहीं।
0: हर बार बच्चे के साथ कोई जाए ये जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां हो।

0: होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों
1: बिल्कुल
0: का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते ही किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत कुछ
0: अभी
1: सीख
0: जैसे
1: सकती
0: बारिश
1: सीख
0: का जब
1: सकते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
1: हाँ
0: कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे, ये भावना
1: बिल्कुल
0: विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है। बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जब
1: बहुत
0: बच्चों को
1: जरूरी है।
0: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
1: बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता
0: जी
1: है कभी कभी।
0: भाई, बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो जल्दी गाना सुने।

0: सेवा देश की सुरीली धड़कन इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं, और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं, बिल्कुल
0: अगर
1: नहीं
0: वो खुश हैं
1: तो
0: तो
1: बिल्कुल
0: खुशी दिखाई
1: खुश
0: देगी, अगर
1: दिखेंगे।
0: वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है, और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो
1: उसको
0: सच्चाई
1: देख
0: है
1: के, उसको खुश देख के
0: उसके
1: ना,
0: बारे में
1: हम
0: हम
1: लोग भी
0: समझ ही
1: थोड़ा सा
0: नहीं पाते।
1: अवसाद में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है। वो क्या करता है, वो ये करने लगा लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है।
0: हाँ,
1: तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं। वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल। इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं,
1: हाँ,
0: तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर पे देखते रहते हैं कि कितने कितने
0: हाँ,
1: लाइक्स हो गए,
0: वो
1: कितने
0: लाइक कितने
1: कमेंट्स
0: बढ़
1: हो
0: गए।
1: गए
0: हाँ
1: वो उसी देख में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है, कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं। एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तुम तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते? तो
0: बिल्कुल,
1: हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में, कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे
1: बिल्कुल,
0: मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, इसके इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप
1: बिल्कुल। और
0: बता
1: ये
0: रही हैं।
1: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि
0: जी
1: हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई, हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर रात को हम तखिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये
1: बिल्कुल,
0: इतना प्यारा संदेश है, और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है। है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा।

0: करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
1: क्या बात
0: क्योंकि
1: है।
0: मन से किए गए काम खुश करते हैं।
1: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा
0: एक
1: ये
0: प्यारा सा
1: प्यारा सा
0: गीत।
1: गाना।

0: बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना। और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का
1: दिखावा
0: दिखावा का।
1: करना
0: जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें। क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है,
0: बिल्कुल
1: और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज़ है, हम खुश हैं इसमें, वो चीज़ होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगी।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब हाँ, मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं। और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो, और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत
1: बिल्कुल,
0: सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की।
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है। ये
1: बिल्कुल।
0: भी
1: और
0: सही
1: एक
0: बात है।
1: बिल्कुल, एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है, क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर से होता है। लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है, ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश हैं।
1: तो एक और जो हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि भाई, दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है। फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं, क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है। तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और
1: जी
0: जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है हमें, कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना
0: हाँ,
1: कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ नहीं हो रही तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे तो वो बहुत
0: और
1: खतरनाक चीज
0: महिलाएं
1: होती है।
0: हेयर पिन घुमाती हैं
1: हाँ, हेयर
0: जिससे
1: पिन, चाबी लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी

0: रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना,
1: जी
0: जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
1: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें,
0: बल्कि हम
1: हेयर
0: कहेंगे
1: पिन,
0: कि आप
1: इनका तो
0: को
1: कभी
0: बिल्कुल
1: ना
0: आप
1: करें।
0: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुँचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए,
1: जी
0: और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक
1: जी
0: आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही।
1: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से, मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है, तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है,
0: बिल्कुल
1: तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से
0: बिल्कुल।
1: कम करना
0: और
1: है।
0: सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50, उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज़, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना एक कान में लगा लिए, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कृपया करके, अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज़ से उसकी जाँच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जाँच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की है, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामणि में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, सीएपीएफ बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी।
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी

भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं,

0: का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
0: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो
1: जी
0: स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था,
1: जी जी
0: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी।
1: जी
0: बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है।
1: ओके
0: 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी जी
0: तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की
1: जी
0: जानकारी
1: जी
0: थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे।
1: जी
0: पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खास तौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते।
1: जी
0: परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है।
1: ओके
0: तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग
1: जी
0: गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का इन
0: जी
1: कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी,
0: बिल्कुल
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेष बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम सीसीटीवीज को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल,
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे
0: बेसिकली
1: हैं?
0: जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है,
1: जी
0: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स।

0: आते हैं और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
1: जी। और जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाके और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है RCTC में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ए मेरे वतन के लोगों।
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है।
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था।
1: जी जी,
0: तो दिल को छूता है ये।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई बिहार में।

0: में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा,
1: जी
0: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना, और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ,
1: जी
0: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स
1: जी
0: हैं, जो
1: जी
0: उस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला, और किस तरीके से रोकना है अपने
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है,
0: जी
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो
0: बिल्कुल
1: यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है।
0: जी
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है, और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे, तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई, और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में।

0: जाके ओपीडीज लगाते थे।
1: ओके,
0: उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य,
1: सब एसएसबी कर रही है।
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए, या आर्मी के अगेंस्ट, या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट, अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा। तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है।
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ,
1: जी
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे, विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा? कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट।
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ, संथाल
1: जी
0: परगना में,
1: जी
0: बहुत सीधे साधे लोग
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे,
1: जी
0: पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में, फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया। आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं जरूर बताता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना
1: जी
0: चाहूँगा कि
1: प्लीज।
0: किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी,
1: जी
0: हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाईएस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई,
1: जी
0: और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसको हमने अपने ही

0: बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक
1: जी
0: स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई,
1: जी
0: और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब, तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो
1: प्रेपरेशन.
0: प्रैक्टिसेस हैं, जो
1: जी
0: हम
1: जी
0: लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे,
1: ओके
0: हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की,
1: जी
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए,
1: ओके
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वंडरफुल. तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है. लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी. शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो. तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी.
0: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों, लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया, SSB ने वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए.
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी,
1: जी
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो
1: जी
0: एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके,
0: बिल्कुल
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में जो ट्रेनिंग आप दे रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं.
0: हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है
1: जी
0: ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया
1: लगभग
0: हमारे
1: सभी.
0: उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है,
1: जी
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है, तो बहुत अच्छा
1: तो मेरे ख्याल
0: है।
1: से आप ट्रेनर हैं, तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS, कुछ ऐसे ही मेरे
0: बिल्कुल
1: अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में.
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है,
1: जी
0: उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है,
1: जी
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है,
1: ओके
0: उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है, कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का. दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी. कुछ आपके

0: पर्सनल लाइफ के बारे में जाने,
1: बिल्कुल
0: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
1: बिल्कुल. मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं,
0: जी
1: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में. और
0: पिथौरागढ़ में अरेंज्ड ही होती होंगी ना उस समय, तो हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं, ओ पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था. तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं
1: हाँ
0: शादी से
1: बिल्कुल.
0: पहले?
1: हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की. जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है. तो जब पाता, लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो
0: जी पत्र. ओके
1: कहिए, तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है. और वो
0: ओके
1: मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है. तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है.
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो.
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है. पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा. हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा,
0: जी
1: अलग
0: जी
1: अलग जगह
0: जी
1: ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा. और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही.
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं,
1: जी
0: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है,
1: जी
0: मॉडर्न पढ़ाई है, और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का या?
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं. बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी
1: वो
0: जी
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है. बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं. तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
0: जी
1: हो जाए.
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है,
1: बिल्कुल
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स.
1: बिल्कुल. हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं. और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है. और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए. वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही
0: वाह,
1: बेहतरीन उनका कार्य है. और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं. उनकी सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता है. जी
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
1: बिल्कुल.
0: हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है। ललित शाह जी तो एक जनाब हैं, दिल्ली से ही द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व तो ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से

0: अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं CTC SSB श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं, महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन
1: अच्छा
0: लिख रहे हैं, आप
1: ओके
0: पहचान गए होंगे।
1: जी
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम
1: धन्यवाद
0: उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: है यश का
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं।
1: जी।
0: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर ये?
1: जी
0: ऑल राइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव।
1: जी जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑल राइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन
1: जी
0: दोनों आपके बीच आते हैं, यहाँ पे
1: बिल्कुल
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं। कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स, अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं। जी
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो
1: जी
0: मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट
1: बट
0: सुझाव अच्छा है।
1: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है, जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है,
0: जी
1: उनके लिए कुरिकुलम थोड़ा अलग है। और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं,
0: जी
1: उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑल राइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: है। ओके,
1: जी
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम

0: छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफकोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में। मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसपी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पर आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाए।
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली। लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप
1: तो
0: लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नजर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नजर रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
0: तो
1: हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं।
1: बिल्कुल।
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा,
1: धन्यवाद।
0: ऑलराइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सबकी तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश।

0: चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते

0: किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुना है, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: Right then, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

संदेश टू सोल्जर्स, यह कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या

0: 73 है। ये लुटान पुरुंगा बनहर औरानारा करोंधा जिगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल की करतला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये सलियाभाटा भेलवाटार सर्दूकला सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई कोदवारी भूडूपानी कठमोरगा लालपुर परला चोटिया कापानवापारा खड़पड़ी बनिया झुनकीडी बांधापारा कुकरी कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये बंगुरसिया जुनवानी कशडोल बुलेकेरा चिमटा पानी गया कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर पकरीद नवागांव कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: अभी आप सुन रहे थे CF वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक हवे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करथन। झोकाओ नंदू भैया के जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, देखो काम बूता ला मन लगा के करबे तो कोनो भी काम के प्रति जौन ढेरियाए के मन रहते तेन हर दूरिया हो जाते, और काम बूता ला हमन कहूँ भार रख के करथन तो पूरा नहीं होवे, ओमा परेशानी आते ऐसे लगे लगते। फिर वैसने अपन अपन जौन काम बूता में मन लगा के काम करथन तो वो कामों हर काम करे कस नहीं लगे। और अभी के बेरा में कहूँ हमन खरीफ फसल अवैया है संगवारी हो, तो धान पान चाहे कोनो फसल रहे तेकर बुवाई करथन ना तो हमन को कतार में बुवाई ला शुरू करथन तो बढ़िया लगही, फसल के उत्पादन जौन है तेन हर ज़्यादा मिलही। तो संगवारी हो हमन गोठ बात करबो, किसान भाई मन जौन धान के बुवाई करत हे तो कतार विधि के पालन करत हन तो बढ़िया रही, एकर अब्बड़ कन फायदा हवय और वो फायदा के लाभ बढ़िया ले मिलत रहते। तो जानबो के पौधा ला का होते, पर्याप्त धूप मिलते, कतार में हमन लगाए वाला जौन पौधा है तेला समान रूप से सूर्य के प्रकाश में रखें तो बढ़िया रही थे, पौधा जौन है तेन हर स्वस्थ रही, हवा के अच्छा में संचार होते। संगवारी हो कैसे के जौन पौधा के बीच हवा ते में उचित दूरिया रही तो एकर ले हवा हर आवाजाही बढ़िया ले करही तो हर एक पौधा ला सुंदर हवा मिलही। खरपतवार के जौन बात करबो तो कमी हो जाते खरपतवार के, बंद कचरा कम जामते, जौन लाइन वाला हमन पौधा लगाए हैं ना तो बढ़िया, और फसल जौन है कतार में लगे रहते तो निंदाई गुड़ाई के काम उतर तको ले बढ़िया होते, जेकर ले बंद कचरा जौन रहते

0: तेन हर कम होते। ऐसने संगवारी हो उर्वरक के सही उपयोग घलाव होते। खातू और उर्वरक हर पौधा तक सीधा पहुंचते, ओकर जौन बर्बादी आए तेन हर नहीं होवे। पानी के बचत के बात करें तो कतार विधि में बुवाई करे ले पानी के बेहतर प्रबंधन हर सुघर होते। अनावश्यक जौन पानी रहते तेकर खपत हर कम होते। संगवारी हो उत्पादन के क्षमता में बढ़वार होते। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार कतार पद्धति ले धान के उपज हमन सामान्य पद्धति के तुलना में ज्यादा ले सकत हन। कतार बुवाई के विधि कैसे करें तो खेत के बढ़िया ले जोताई कर ले वह संगवारी हो। ओकर बाद खेत ल बरोबर रखे, स्वस्थ पौधा के बढ़िया चयन करे और रस्सी रहते चाहे मार्कर रहते ओकर सहायता ले सीधा लाइन ला बना ले, कतार बना के बढ़िया निश्चित दूरी में पौधा के रोपाई करत है तो बने रहते। बेरा बेरा में सिंचाई और खरपतवार के नियंत्रण घलो करत रहे तो सुघर रहते। एकर फायदा यही होते कि श्रम जौन है तेन हर कम लगते, लागत हर घटे लगते, उत्पादन क्षमता बढ़ते और आय में बढ़वार होते। ये तो गोठ बात हो संगवारी हो, हमार धान बुवाई के कतार ले बुवाई करीन कहके और हमन खेत बचाबो एमा गोठ बात करत हन। तो खेत बचाए के उपाय आप मन जानते हो, खेत में हमन मेड़ बंदी कर दीन पार बना के रखी तो कर ले बढ़िया रहते। बरसात के दे पानी गिरही तो जल ला हमन पानी जौन है ओला छेंक के रखी तो सुघर रही। जैविक खेती ला ज्यादा बढ़ावा देथन, जैविक खेती के उपयोग करत हन तो बने रहते। फसल चक्र अपनाए ले घलाओ जौन खेती किसानी आए फसल ओहर उपज के संगे संग खेत के जौन उर्वरा शक्ति ये ओला बना के रखते। पेड़ लगा के माटी जौन है पर्यावरण है ओकर हमन बढ़िया से संरक्षण और रक्षा कर सकत हन। आधुनिक कृषि तकनीक के जानकारी रख के ओला अपनाथन तो बने रहते। संगवारी हो खेत बचाए के बड़कन लाभ रहते। खाद्यान्न जौन है हमन लेथन फसल तो ओकर उत्पादन हर बढ़ते, किसान मन के आय में बढ़वार होते और पर्यावरण घलो हर संतुलित रहते। अवैया जौन पीढ़ी हवा ओला उपजाऊ भूइया मिलही, देश के जौन खाद्य सुरक्षा है वह हर मजबूत होही। ये तो बढ़िया गोठ बात हो संगवारी हो और आज आप मन बर हमन लेके आए हवन बढ़िया से जानकारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में। संगवारी हो तो आज के जौन विषय हवा धान फसल में नील हरित काई और भूरवा खाद के उपयोग के बारे में हवा और पहुना मन हवा संगवारी हो। डॉक्टर परमेंद्र कुमार केसरी जी वरिष्ठ वैज्ञानिक हो आप मन मृदा विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर ले और संचालन करे थे जीवन भैया मन तो आवाओ सुनाथन।
1: किसान भाई हो आप मन जाना था आज ये फोन इन कार्यक्रम, फोन इन कार्यक्रम में हमारे श्रोता संगवारी में सीधा विशेषज्ञ मन से जुड़ते और जेन सवार रहते उखर बढ़िया समाधान पाते। किसान भाई मन आनी बानी के जानकारी अलग अलग फसल के बढ़िया विस्तार जानकारी पाते। आज के जिन विषय है धान फसल में नील हरित काई एवं भूरा खाद का उपयोग, अब ये जानकारी ये विषय में देह बरा है हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक पहुना डॉक्टर परमेंद्र कुमार केसरी कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। डॉक्टर परमेंद्र कुमार केसरी जी आप मन के स्वागत करते हैं। जीवन भैया राम राम।
2: राम राम जीवन भैया।
1: सर हमारे किसान भाई मन खेती किसानी करत हैं और खेती किसानी करते तो फिर खाद के उनका बहुत जरूरत पड़ते। आज जिन विषय है हरियर खाद और ये भूरा खाद एकर उपयोग कैसे करें एकर बारे में हमला विस्तार से जानकारी बताओ। और अभी हमारे श्रोता मन के फोन आते उठाए फोन लिखकर। हेलो कौन बोला था, कहाँ से बोला था, नाम बताओ आपका नाम बताओ। मैं आकाशवाणी बोला था।
3: जी मैं परमेश्वर प्रसाद सनाट जगराम छतौना।
1: हाँ परमेश्वर कुमार सनाट आप मन छतौना से बोला था। अब आपके फोन दे फोन इन कार्यक्रम मन लग गए तो पूछाओ आज के जिन विषय है धान फसल में नील हरित काई भूरा खाद के उपयोग कैसे करे जाए एक बारे में जानकारी दे। हमारे बीच वैज्ञानिक है डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केसरी जी मन तो उनखर से सीधा जुड़ाओ और आप मन के सवाल पूछाओ। पूछो भैया सवाल का है तेला।
3: धान फसल में नीम हरित कटाई एवं भूरा खाद का उपयोग क्या है, वैसे हम लोग अभी तक रासायनिक में पड़े हुए हैं।
2: देखिए भैया
3: उसका कुछ उपयोग।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नील हरित काई है ना एक प्रकार का इस काई है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको कुदरत ने इतनी क्षमता दिया हुआ है कि ये प्रति हेक्टेयर मतलब ढाई एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम नत्रजन की बचत करता है ना। मतलब एक एकड़ में हम मोटा मोटा बात करें तो आधा बोरी के आसपास यूरिया की बचत कर देगा इसमें। हाँ, ये क्या करता है

0: वातावरण में जो नाइट्रोजन है ना हमारा 78% लगभग, उससे नाइट्रोजन लेके धान के पौधे को उपलब्ध कराता है। तो ये नील हरित काई बहुत अच्छी चीज है, इसको आप उपयोग करिए, इससे आपका रासायनिक उर्वरकों में खर्चा बचेगा और मिट्टी भी उपजाऊ होती जाती है समय के साथ साथ।
1: अब जैसे कि मान लो हम अभी खेती कर रहे हैं रासायनिक में
0: जी,
1: तो रासायनिक खेती में उर्वरक क्षमता तो घटते जा रहा है,
0: तो उपयोग दक्षता का
1: नील हरित के माध्यम से जो खेती किया जाएगा कितने वर्षों में होगा?
0: देखिए ऐसा है कि इसमें जैसे मान लो आपको जो मात्रा दी, इससे आपका 25-30% नत्रजन की बचत हो जाएगा। हाँ, पूरा तो नहीं बचेगा, इनकी क्षमताएं सीमित है ना। तो जो हम मान लो एक एकड़ में कितना देते हो आप, लगभग 2 बोरे यूरिया देते हो ना, दो बोरे यूरिया देते हो, ये आपका करीबन आधा से पौन बोरी यूरिया की बचत कर देगा, ठीक है। तो आपको इतना पैसा बचा ना, वो पैसा बचा और मिट्टी भी उपजाऊ होगी आपके समय के साथ। और मिट्टी में
1: मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो इस पद्धति में खेती करने
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: 3 साल लग जाएगा मतलब सुधार लाने में,
0: वो करीबन 3-4 साल में इनकी मात्रा बढ़ जाती है वहाँ पर। और जैसे ही फिर आप भविष्य में ना भी डालेंगे ना, जैसे ही धाप आपका धान लगेगा वैसे ही ये खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है, इसके स्पोर्ट्स वहीं रह जाते हैं बीच मिट्टी में। मतलब 3-4 साल तक लगातार डालिए, आगामी वर्षों में खुद ब खुद ही आ जाता है।
1: और
0: इसका डालने का विधि, डालने का विधि जो है ना भैया, वो ऐसा है कि जब हम रोपाई या ब्यासी कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद पानी को रोक के रखना है करीबन 4 इंची खेत में, और 4 किलोग्राम नील हरित काई का कल्चर, 4 किलो नील हरित काई का कल्चर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो इसको कैसे फैलाना है, 4 किलो के 1 एकड़ में फैलाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो इसमें गोबर खाद मिला लीजिए, तो रेत मिला लीजिए, करीबन 10-12 किलो बन जाएगा मात्रा। तो 1 एकड़ में पानी को रोके रहिए ब्यासी और रोपाई के 7 दिन बाद, इसको बढ़िया बराबर मात्रा में फैला दीजिए और पानी को रोक के रखेंगे। और पानी हमेशा कोशिश करिए कि 2-4 इंच खेत में भरा रहे, फिर ये क्या है ना, अपना ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके वातावरण से नाइट्रोजन लेके हमारे धान के फसल को देना चालू करेगा।
2: तो सनाट भैया देखो बढ़िया आप मन के देन खेती बार ये हरित काई भूरा खाद बढ़िया महत्व के है, और एला निश्चित रूप ले आप मन अपनाओ, खेती में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, आपके जेन खर्चा है कम आई खेती किसानी पर
1: बचत हो जाएगा।
2: तो इधर से हाँ बढ़िया सोचे हो, इसने खेती करी हो, आज फोन लगा है आकाशवाणी बिलासपुर फोन इन कार्यक्रम में खबर आप मल्ला सनाट भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार।
1: आपको भी धन्यवाद, जय जोहार।
2: हाँ तो सर ये मन बढ़िया सवाल करी है हमारे किसान मन जुड़ीन है, और हमन हाँ तो हमन ये कहबो के ये हरित काई और भूरा खाद का है सर, एक थोड़ा विस्तार से बताओ हमारे रेडियो के माध्यम से सुनता किसान सुना। तो सर ये बताओ विस्तार से भूरा खाद,
0: तो नील हरित काई का तो अभी अपन ने सुना चर्चा किया इसमें किसान भाई के साथ, आगे अपना आता है जो भूरा खाद।
2: जी जी जी,
0: ये भूरा खाद है क्या, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा
2: भूरा खाद का,
0: क्योंकि अभी तो हम लोग हरी खाद सुनने से एक भूरा खाद भी शब्द अब सुनने आ रहा है। तो ये हरी खाद का ही रूप है, हम जैसे हरी खाद में क्या करते हैं, ढांचा लगा देते हैं अप्रैल महीना में, अप्रैल मई में लगा देते हैं, और जब धान लगाने के रोपाई के समय या बुआई के 15-20 दिन पहले इसको मिट्टी मिला देते हैं, फूल आने के पहले, जब जब इसमें ढैंचा सनई है ना, बरबट्टी मूंग लोबिया ये सब फसल को उपयोग करते हैं हरी खाद के रूप में, दलहनी फसल, इनको जब फूल आने के पहले।
2: हमें श्रोता में जुड़े थे, हेलो कौन बोला था, कहाँ से बोला था भैया?
3: हाँ भैया मोर माया भरे राम राम।
2: हाँ बिल्कुल, आपको आवाज से पहचाने लगा थे, फिर नामो पता है भैया?
3: हाँ भैया मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमे तरले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था हूँ।
2: वर्मा भैया बिल्कुल, आप मन देखो दे बढ़िया फोन लगाए हो, लग गए फोन, आप मन सीधा विशेषज्ञ ले पूछो भैया आज के जैन विषय ले का बात तेला है ना।
3: हाँ भैया हाँ डॉक्टर भैया राम राम।
0: राम राम भैया, राम राम वर्मा भैया।
3: हाँ भैया जैसे ये नील हरित काई और भूरा खाद ये का होते भैया, और एकर उपयोग हमन हा धान फसल में कौन समय कर सकथन, और एकर लाभ भैया फसल ऊपर जम्मो बात ला पूछे बार फोन लगाए हैं डॉक्टर भैया आप मन ले।
0: जी जी भैया, जी भैया आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात है। नील हरित काई एक प्रकार का काई है ना, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये इसको

0: हम 1 एकड़ में 4 किलोग्राम कल्चर को मिट्टी में खेत में रोपाई या ब्यासी के 7 दिन बाद फैलाते हैं, और 1 एकड़ के लिए, ठीक है। और ये
1: ठीक है।
0: वातावरण से नाइट्रोजन लेता है, नत्रजन जो
1: हाँ
0: जिसको यूरिया के माध्यम से देते हैं ना, नत्रजन यूज, उसको
1: हाँ
0: ये
1: हाँ भैया,
0: लेके
1: हाँ
0: पौधा को उपलब्ध कराता है। लगभग आपका 25% से 30% तक नाइट्रोजन की बचत कर देगा, ये रासायनिक उर्वरकों की बचत कर देगा। ये तो
1: अच्छा
0: हुआ
1: अच्छा
0: भैया नील
1: भैया,
0: हरित काई के बाद। अब बात आता है भूरा खाद, है ना।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: भैया,
0: भूरा खाद क्या होता है, जैसे हम हरी खाद लगाते हैं ना, तो
1: हाँ
0: इसमें इसमें वही बीज रहता है, 250 आसा नहीं। इनको हम धान के साथ मिक्सिंग कर देते हैं, धान के बीज के साथ। मान लो 1 एकड़ में हम 40 किलो धान लगा रहे हैं छिड़काव पद्धति में, ठीक है,
1: अच्छा अच्छा भैया,
0: और
1: हाँ
0: इसमें 16 किलो ढैंचा का बीज मिला दीजिए, ठीक है,
1: हाँ
0: दोनों को मिला के बुआई कर दीजिए। अब लगभग 25 से 30 दिन में धान तो छोटा रहेगा और ढैंचा
1: हाँ
0: ऊपर निकल जाएगा, लगभग 1 मीटर के आसपास आ जाएगा। बहुत जल्दी बढ़ता
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: 30 दिन
1: भैया,
0: में,
1: हाँ
0: 30 दिन में 1 मीटर आ गया मोटा मोटा मान लीजिए। तो अब इस स्थिति में इसको क्या करिएगा, इसके ऊपर में, ये तो चौड़ी पत्ती वाला है ढैंचा, इसके ऊपर चौड़ी पत्ती वाला जो निंदा नाशक है 2,4-D
1: अच्छा
0: खरपतवार
1: अच्छा भैया,
0: नाशी,
1: हाँ
0: इसका छिड़काव कर देंगे। तो ये तो चौड़ी
1: हाँ
0: पत्ती को मारेगा, धान को कुछ नहीं करेगा, और ये जो
1: हाँ
0: जो आपका ये है ढैंचा, ढैंचा अब मरना चालू होगा, उसकी पत्ती भूरा होकर जमीन में गिर जाएगा और पौधा मर जाके मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं भूरा खाद।
1: अच्छा अच्छा भैया,
0: और ये
1: हाँ
0: मान के चलिए कि ये भी आपके रासायनिक उर्वरकों का 20 से 25% तक की बचत कर देता है, और साथ में कई सारे जैविक पदार्थ भी वृद्धि करता है आपकी मिट्टी में। आपका जो कार्बनिक कार्बन जिसको बोला जाता है, मिट्टी का एक भौतिक दशा और रासायनिक दशा का सूचक है, उसकी मात्रा भी अच्छी खासी बढ़ती है इससे, और मिट्टी पोला हो जाता है, भुरभुरी होता है, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है। ये बड़े फायदेमंद चीज़ है भूरा खाद, इसको आप कर सकते हैं। ये उन किसान के लिए भी है जिनके पास पानी की कमी है, जो वर्षा आधारित खेती करते हैं, क्योंकि आप धान के साथ मिला के बो दीजिए और जब 1 महीने बाद इसमें ऊपर 2,4-D के स्प्रे कर दीजिए निंदा नाशक। जी भैया
1: अच्छा
0: नारायण
1: भैया,
0: प्रसाद
1: हाँ
0: वर्मा भैया, देखो बढ़िया अपन के सवाल रही से और हमारे सर मन बढ़िया विस्तार से बताई से। अपन के खेती किसानी में गजब के चिफिक है नारायण भैया, और निश्चित
1: हाँ
0: रूप
1: भैया,
0: ले
1: हाँ
0: आप मन के ये जानकारी लेता होकर उपयोग भी करता हो, ऐसे हमका लगते। काहे हर वक्त आप मन ना किसान मन का बढ़िया अपन ज्ञान लगला बांटत रहते हो, यही बात के हमला
1: हाँ
0: पता
1: भैया,
0: चलते
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना। आप फोन लगाए हो नारायण भैया, खबर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और
0: जीवन
1: डॉक्टर
0: भैया
1: भैया
0: के
1: को
0: जय
1: बहुत
0: जोहार।
1: बहुत धन्यवाद सुघर जानकारी पर। राम राम, जय जोहार
0: राम
1: भैया।
0: राम सर, जैसे हम अब बात करबो कि भूरा खाद और हरित खाद के, तो किसान मन अब खेती किसानी में उपयोग करही, एखर से किसान मन ला जेन फसल उत्पादन होते ओमा इला लागत ह कम लगते रासायनिक खातू के अपेक्षा, ये बात के ला फायदा मिलते नहीं, यहूल थोड़ा आप मन बता बिल्कुल
1: दो।
0: भैया, आपकी मिट्टी उपजाऊ हो जाएगा।
1: आओ
0: हमारे श्रोता भी मन जुड़ गए
1: हेलो
0: सर। हेलो, कौन बोला था, कहाँ से बोला था?
1: भैया, धनेंद्र डिक्सेना बोला था, ग्राम टोकू पथरा विकास खंड पाली ले। हाँ
0: डिक्सेना भैया, मैं जीवन भैया स्वागत करत हूँ आप मन के कार्यक्रम, फोन इन में दे लग गए आपके फोन। हाँ बोला, आज के जैन सवाल भैया का पूछना चाहता हूँ।
1: ये केसरी साहब से सवाल है, 2 ठन मोर हरी खाद नील हरित खाद बढ़े और 2 ठन भूरी खाद बढ़े।
0: अच्छा
1: जी
0: जी
1: तो
0: भैया,
1: सर जी, ये नील हरित खाई का प्रयोग ना अपन खेत में करेंगे तो क्या क्या सावधानी रखना है?
0: सावधानी भैया इसमें एक ही, क्या पानी हमेशा भर के रखिए, कम से कम 4 इंची,
1: जी
0: पहला सावधानी,
1: जी
0: और बस यही है। और दूसरा एक सावधानी और मैं बोलूँगा आपको कि
1: जी
0: नील हरित काई और हरी काई में अंतर जानना सीखिए, है ना भैया।
1: जी
0: मालूम चला हरी काई को ही हम नील हरित काई समझ के बढ़ा रहे हैं, अब वो नुकसान करेगा हमारा धान को,
1: जी
0: है
1: सर, बहुत बढ़िया बात बताते
0: ना।
1: हो।
0: तो एक
1: जी
0: पहचान बताता हूँ भैया, वो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो
1: जी
0: नील हरित काई है ना भैया, जो हमारा लाभ
1: हाँ
0: वाला है,
1: भैया,
0: फायदेमंद चीज है, इसके रेशे बहुत छोटे होते हैं। अगर हम हाथ में उठाएंगे तो, और उठाने के बाद उंगली को खोल देंगे ना, तो वो भी खुल
1: जी
0: जाएगा, फट जाएगा, एकदम मिट्टी के समान रहेगा। अगर मस लेंगे तो
1: जी
0: मसला आ जाएगा। और वही जो नुकसानदायक है हरी काई, उसको वो ना उसको निकालेंगे तो उसका रेशा लंबा लंबा रहेगा और चिपचिपा रहेगा।
1: जी
0: तो सावधानी दूसरा यही है कि उसको हरी काई को पहचान के निकालना है और नील हरित काई को बढ़ने देना है।
1: पर अन्य काई आ जाए तो उसको कैसे करना है खत्म करने के लिए?
0: एक तो आप अगर प्राथमिक स्तर पे है, बहुत कम मात्रा में है, तो उसमें नीला थोथा का

0: कर दीजिए 1% का घोल बना के, पानी निकाल दीजिए पहले, और जहाँ जहाँ पे काई है, प्रारंभिक अवस्था की बात बोल रहा हूँ, उस समय आप
1: जी
0: वहाँ पे नीला थोड़ा कॉपर सल्फेट का छिड़काव कर दीजिए 1.1% का, तो वो उससे कंट्रोल हो जाएगा। और मान लीजिए स्थिति बिगड़ बहुत ज़्यादा आ गया है, ऐसी
1: हाँ
0: स्थिति में आप उसको, आपको मतलब खुद निकालना पड़ेगा, श्रमिक लगा के खुद निकाल, उसे निकाल के फेंकना पड़ेगा।
1: जी
0: तो हम सावधानी पहले ही बरतें, हमारा किसान भाई तो रोज़ अपना खेत जाते हैं, है ना,
1: जी
0: तो जहाँ भी दिखे तो सबसे पहले उसको निकाल के फेंके, नष्ट करें, और
1: जी
0: नील हरित काई को बढ़ने दें। नील हरित काई का परिचय बताया, पहचान, एक तो हल्का सा
1: जी जी
0: नीलापन लिया रहेगा, चिपचिपा नहीं होगा, और हाथ में मसलेंगे तो मसला आ जाएगा,
1: अच्छा,
0: जहाँ पे
1: तो सर
0: पानी
1: जी
0: भरा, जिस खेत में पानी भरा है ना, उसके लिए है। जो
1: जी
0: धान को हम पानी भर के रखते हैं हमेशा, है ना
1: जी
0: जी भैया।
1: तो सर ये भूरी खाद के लिए है
0: अब
1: कि धान के साथ कौन सा बीज को बोना पड़ेगा सर?
0: जैसे आपका ढैंचा है ना, मूंग है, मसूर है, बरबट्टी को बो सकते हैं, सनई है,
1: अच्छा
0: इनको बोना है धान के साथ मिला के। तो 40 किलो 1 एकड़ में बोते हैं आप धान छिड़कावा में, तो इसको
1: जी
0: 15 किलो 16 किलो इसको मिला लीजिए, और मिला के मिश्रित करके बोवा दीजिए, बो दीजिए, और लगभग एक
1: जी
0: महीने बाद धान तो छोटा रहेगा और इसकी मात्रा, ये अच्छा बड़ा हो जाएगा, करीबन
1: जी
0: 1 मीटर के आसपास आ जाता है 1 महीना में। उस समय
1: जी
0: इसके ऊपर 2,4-D जो भी चौड़ी पत्ती वाला निंदा नाशक है उसका छिड़काव कर दीजिए, तो ये भूरा
1: जी
0: होकर पौधा मरना चालू हो जाएगा, धान को कुछ नहीं होगा, और ये मिर के ये मरना चालू होगा और वहीं पे मिट्टी में मिल जाएगा, गिर जाएगा। तो ये एक
1: जी
0: तरीके से आपका मतलब श्रमिक का पैसा भी बचा, बड़े फर्स्ट क्लास हो गया, मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है अपनी, और मिट्टी मिल जाता है, जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जैविक कार्बन की मात्रा, मिट्टी के भौतिक रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार होता है ना।
2: ठीक से ना भैया, देखो कितने बड़े पूछे सवाल आपमन, और बढ़िया जानकारी आपमन मिली से, फोन इसने लगा
1: जी
2: रही
1: जी
2: है, बहुत धन्यवाद, जय जोहार।
1: नहीं धन्यवाद, जय जोहार केसरी साहब लोग, धन्यवाद। मैं खर से ना
0: धन्यवाद भैया।
2: तो सर किसान मन ला हमारे जैसे भूरा खाद के उपयोग ले लाभ मिलते की देवा
0: जी
2: है ना,
0: जी भैया,
2: और सर एखर बार जैसे शासन को तिल कुछ किसान मन ला ऐसे सहयोग की है क्या व्यवस्था?
0: अभी ग्राम सेवक हैं,
2: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: उनके
2: हाँ
0: माध्यम से, कृषि विभाग के
2: अच्छा अच्छा
0: अधिकारी
2: अच्छा
0: हैं,
2: जी
0: वो
2: जी
0: ज्यादा अच्छा बता
2: जानकारी।
0: पाएंगे इसको, ये कि सर धान बहुत
1: हेलो,
0: ज्यादा है जैविक खेती की ओर।
2: हमारे श्रोता जुड़ गए।
1: हेलो,
2: हेलो, कौन बोला था, कहाँ से बोला था? हेलो, कौन बोला था? आपके आवाज सुनाते भी है, बोलो ना आप।
3: हाँ हाँ भैया, योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांध है बेमेतरा।
2: हाँ बोलो जांगड़े जी।
3: आज विषय काहे भी है?
2: धान फसल में नील हरित काई या भूरा खाद के उपयोग, यही विषय है आज के।
3: आप अच्छा धान में?
2: हाँ धान फसल में जी।
3: हाँ,
2: ले पूछो जल्दी सवाल, समय का उपयोग करो बढ़िया।
3: हम ये पूछना चाहते हैं भैया, अभी तो ये मानसून के अगोरा हवे है,
2: हाँ सब बोला
3: तो
2: है।
3: कतेक पहली कौन से समय में खाद के मतलब है करना है, मात्रा अपन ला देना है?
0: भैया इसके लिए ना आपको जो नील हरित काई है ना, ये धान
3: हाँ
0: के रोपाई और ब्यासी, अगर सीधी बुआई के तो
3: हाँ
0: ब्यासी करते हैं हम लोग, और वैसे
3: हाँ
0: रोपाई करते हैं, रोपाई के 7 दिन बाद, 7 से 10 दिन
3: अच्छा
0: के बीच में 4 किलोग्राम नील हरित काई का कल्चर, इसको 1 एकड़ में छिड़काव करना है ना।
3: अच्छा
0: तो ये, और पानी को सावधानी क्या है, पानी को रोक के रखना है हर समय, करीबन 3 से 4 इंची पानी को स्थिर बनाए रखना है खेत में,
3: अच्छा
0: जिससे इसको बढ़ने का अवसर मिल पाए, और फिर
3: अच्छा
0: ये आपका वातावरण से नत्रजन लेगा और अपना जीवाश्म बढ़ाएगा, जीवाश्म पदार्थ बढ़ाएगा, और आपके मिट्टी को
3: जी
0: उपलब्ध कराएगा, धान के फसल को उपलब्ध कराएगा, और ये
3: जी
0: मिट्टी में सूक्ष्म जीव की मात्रा भी बढ़ाता है, आपके भौतिक रासायनिक दशा में भी सुधार करता है।
3: अच्छा
2: जांगड़े भी अपन खेती कतेक में करते हो?
3: 10 एकड़ में करथन भैया।
2: अच्छा, और रासायनिक खाद तो कतेक उपयोग करते हो भाई, उसका धीरे धीरे कम कराओ
3: नहीं,
2: भाई।
3: जितना कम कोशिश करथन भैया, जिन हमारे एकर गोबर के अपन जिन बनाथन ना जैविक खाद वगैरह मिला
0: हाँ,
3: के, वो
0: बहुत बढ़िया।
3: मतलब अभी डालथन है
0: तो
3: जैविक
0: जांगड़े
3: से बोन
0: भैया, तो
3: करे से
0: नील हरित
3: पहली
0: काई आप कहाँ से प्राप्त करोगे, तो पूछे नहीं,
3: जी।
0: नील हरित काई कहाँ से मिलेगा
3: हाँ,
0: आपको, आपने तो
3: हाँ ये
0: तैयार
3: कहाँ ले
0: किया
3: मिल
0: है क्या,
3: सकत भैया हमला?
0: आपने तैयार किया है क्या, नहीं किया है अभी, हम लोगों ने कई लोगों से
3: नहीं
0: करो।
3: अभी तक
0: अच्छा
3: तो नहीं किए, नहीं
0: अच्छा
3: कर
0: ठीक,
3: पाए
0: इसको
3: हम
0: ना
3: भैया।
0: जांगड़े भैया आप खुद भी अपने तैयार कर सकते हो, अब तो खैर समय
3: अच्छा
0: निकल गया है, पानी अब इसको धूप नहीं मिल पाएगा ज़्यादा, अच्छा नहीं तो सबसे
3: हाँ
0: बढ़िया समय होता है मई, अप्रैल मई जून का, उस समय जब
3: अच्छा
0: धूप अच्छी रहती है ना, तो इसको मस्त टंकी में अपन खुद भी तैयार कर सकते हैं कल्चर लेके।
3: अच्छा
0: तो फिलहाल अभी
3: हाँ
0: आप ना कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, और

0: कृषि विज्ञान केंद्र सरकंडा बिलासपुर और कृषि विभाग के पास भी उपलब्ध है ना, तो यहाँ से इनको आप प्राप्त कर सकते हो
1: जी।
2: हाँ तो ठीक है जागरण जी,
1: ठीक ठीक धन्यवाद जी।
2: हाँ जय जवाहर। हाँ तो हम बात करते रहे सर कि किसान मतलब फायदा मिलते हैं और शासन को तीले जैसे अपन कुछ जानकारी लेने था, जिन कृषि विस्तार अधिकारी गांव में है उनकर से जानकारी मन प्राप्त कर सकते है ना
0: जी जी।
2: और हमारे जैसे किसान मन भाई अभी देखते हैं सर, सरकार की घला यही अभी मनसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद और प्राकृतिक खाद के उपयोग करें, रासायनिक खातों के उपयोग कम करें, हमारे सरकार की घला यही भाई अभी चलत है बात है ना
0: जी जी।
2: जेकर से हमारे धान बर या जमो उन्हारी फसल सबों बर हमारे जिन खेती के जमीन है, खेत बचाओ अभियान जिन चलत है उखर बर बहुत फायदा के रही,
0: बहुत ज्यादा फायदा मैंने भैया। अपन इसको उपयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी हमेशा अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहेगी।
2: हाँ
0: और उसमें जो उनकी भौतिक रासायनिक और जैविक दशा है,
2: सूक्ष्म
0: जीव की मात्रा है, हवा की मात्रा है, कार्बनिक कार्बन की मात्रा, ये सब भी बढ़ेगा। आज जो कहीं पे कई बार समस्या आती है कि मिट्टी कड़ी हो गई है, कुछ ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, तो ये सारी चीज़ों में दिन ब दिन सुधार आएगा। तो हमें को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम जैविक की ओर जाएं, तो संपूर्ण जैविक ना हो तो कम से कम एक एक संतुलन की मात्रा में डालें हम,
2: धीरे धीरे धीरे धीरे संतुलन कम करत।
0: और मेरा किसान भाई से यही निवेदन भी है कि आप लोग ना बैलेंस यूज करें, मतलब जो संतुलित मात्रा में उर्वरक को डालें
2: जी जी,
0: एकदम मतलब अंधाधुन वाला जिस तरह ना हो उसको बैलेंस में डालिए, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो जो दलहनी फसल में जो इनका बैलेंस है 4:2:1,
2: अच्छा
0: तीन वाली फसल में इनका जो अनुपात है 4:2:1 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैश का, और जो दलहनी फसल है उसमें 1:3:1 का है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैश का, और तिलहनी में 3:2:1 है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के अपन खेती करेंगे तो हमारा मिट्टी भी ख़राब नहीं होगा और उत्पादन भरपूर मिलेगा हमको, और साथ में जैविक खाद जैव उर्वरक का भी समावेश करें। जैव उर्वरक में धान के लिए एजोस्पायरिलम भी है, नाइट्रोजन के लिए फॉस्फोरस के लिए PSB है, पोटेशियम के लिए KMB है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब भी उपलब्ध है। इनका भी समावेश अपने खेती में करिए जिससे मिट्टी तो उपजाऊ होगी होगी और आपका जो खर्चा है वो भी लागत में भी कमी आएगी और गुणवत्ता सुधरेगा।
2: सर ये बहुत बढ़िया जानकारी आज आप मन बताए हो, नील हरित काई और भूरा खाद के उपयोग ये विषय पर विस्तार से जानकारी हमारे श्रोता मन जुड़ी ढूमल बताए हो। आपके बताए जानकारी रेडियो के माध्यम ले हमारे लाखों श्रोता संगवारी मन सुनत है, निश्चित रूप ले एखर फायदा उठाहे। आज एतेक सुघर जानकारी दिए हमारे स्टूडियो में आके एखर बर डॉक्टर प्रवीण कुमार केसरी सर आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय
0: आपोला भैया, जीवन भैया आपोला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज के तकनीकी सहयोग प्रदान करी है हमारे फोन इन कार्यक्रम में पवन थवाइत वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक, एक संग हमारे फोन इन कार्यक्रम हर यदि सिरावत है। तो जीवन भैया के झोंकाओ जय जोहार।
3: हाँ संगवारी हो, धान फसल में नील हरित काई और भूरा खाद के उपयोग के बारे में बढ़िया से जानकारी सुनते हैं डॉक्टर परमेंद्र कुमार केसरी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक मृदा विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर ले और संचालन करते हिच अरुण जीवन भैया मन। संगवारी हो गोठ बात तो अवकरबो फिर अवाओ सुनाथन संदेशाला।
4: मैंने 2015-16 से ऑल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
5: ऑयल पम्प का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है, इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
6: ऑयल पम्प का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
7: अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो?

0: क्यों? सुनाओ मेरे सौतन को।
1: किसको?
0: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
1: अच्छा ये बात है।
0: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
1: अब तो झट से बात हो जाती है।
0: ऐसा क्या?
2: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
0: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
1: हाँ।
0: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
3: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
4: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
5: परम तो सभी डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
7: संगवारी हो आओ देखो गोठ बात करत करत कार्यक्रम ले विदा देवो। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एकरे संग नंदू भैया के जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा।

जीवन के हर रंग को अपने स्नेह, साहस और संघर्ष से खूबसूरत बनाने वाली हमारी प्यारी बहनों को नमस्कार। बहनों, कुछ तो खास बात है आकाशवाणी बिलासपुर की इन हवाओं में, कुछ तो रंग है हमारे कार्यक्रमों में और कुछ तो बात है हमारी प्यारी प्यारी सखियों में कि हम खींचे चले आते हैं आपसे मिलने और बातें करने। तो बहनों, आपसे मिलने और बातें करने का ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहनों, नारी जीवनदायिनी है, वो जन्म देकर जीवन का सृजन करती है और संवेदनाओं से उसे संवारती है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे महादान की जो किसी को नया जीवन दे सकता है। बहनों, कल्पना कीजिए एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा हो। डॉक्टर कहे कि उसे तत्काल रक्त की आवश्यकता है। ऐसे समय में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान उस मरीज और उसके परिवार के लिए किसी देवदूत से कम नहीं होता। इसी तरह बहनों, कई बार प्रसव के दौरान महिलाओं को अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। समय पर रक्त न मिलने से न केवल माँ का जीवन बचता है बल्कि एक परिवार की खुशियां भी सुरक्षित रहती है। बहनों, हमारे समाज में अभी भी रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं। बहनों, रक्तदान के बाद शरीर नए रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है जिससे रक्त निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय रहती है। आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी दुर्घटना, ऑपरेशन या गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति की जान बचा सकता है। बहनों, रक्तदान से पहले रक्तचाप, हीमोग्लोबिन और कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी जाँच की जाती है जिससे स्वास्थ्य की जानकारी हमें मिलती है। बहनों, रक्तदान के बाद शरीर नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है जिससे रक्त निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय रहती है। बहनों, रक्तदान समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी।

0: को दर्शाता है। बहनों, एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक निश्चित समय अवधि में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। आइए बहनों, हम सभी ये संकल्प लें कि रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और जब भी संभव होगा इस पुण्य कार्य में अपना योगदान देंगे, क्योंकि रक्तदान केवल रक्त का दान नहीं बल्कि जीवन के प्रति सम्मान, संवेदना और मानवता का सबसे सुंदर उदाहरण है। और आइए बहनों, अपनी बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक न कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हमारे आज के क्रम कौशल विकास की ओर। मिलते हैं रंगोली कलाकार मोना केवट जी से। बहनों, त्योहारों का समय समय पर आना और हम सबका त्योहारों को धूमधाम से मनाना हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्योहारों के दिन हम घर को, अपने आंगन को कई तरह से सजाते हैं। बहनों, घरों के आंगन और द्वार पर सजी रंगोलियां खुशी, मंगल कामना और अतिथि सत्कार का संदेश देती है। और आज हम ऐसे ही एक प्रतिभाशाली रंगोली कलाकार से बातें करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी कल्पना शक्ति, मेहनत और कलात्मक कौशल से इस पारंपरिक कला को नई पहचान दी है। आइए जानते हैं उनसे रंगोली कला की बारीकियों और उनके अनुभवों के बारे में। आइए बहनों, मिलते हैं रंगोली कलाकार मोना केवट जी से। मोना जी, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद अतिजी जी, मुझे खुशी है कि आज मैं अपनी प्राचीन पारंपरिक लोक कला रंगोली को लेकर आज आकाशवाणी में उपस्थित हुई हूँ।
1: तो सबसे पहले मोना जी, आप हमें और हमारी सखियों को ये बताइए कि रेडियो स्टेशन आकर आपको कैसा लग रहा है?
2: बहुत खुशी हो रही है अदिति जी, क्योंकि आकाशवाणी जन जन की वाणी है।
1: बिल्कुल,
2: और मैं जरूर रोज आपके आकाशवाणी को सुनती हूँ। अपने छत्तीसगढ़ी जो गीत संगीत हैं और इससे मेरा लगाव भी है, क्योंकि मैं सहायक प्राध्यापक हूँ समाजशास्त्र की और साथ ही मैं एक राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी हूँ। तो हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी जो मिलती है मुझे, वह आकाशवाणी से मिलती है।
1: बेहद खुशी हो रही है हमें ये जानकर कि हम अपने बेहद पुराने श्रोता से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, है ना? तो श्रोता तो है ही आप आकाशवाणी बिलासपुर की और साथ ही रंगोली कलाकार भी है। तो सबसे पहले ये बताइए आप हमें और हमारी बहनों को मोना जी, कि आप कब से इस कला से जुड़ी हुई हैं और आपको रंगोली बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
2: अदिति जी, रंगोली तो मैं विगत 20 वर्षों से कर रही हूँ।
1: काफी वक्त हो गया
2: जी। बिल्कुल सही, क्योंकि चूंकि मेरा पारिवारिक जो परिवेश है उसमें मेरे तीन भाई हैं और मैं एक ही बहन हूँ।
1: अच्छा,
2: तो मुझे इसकी प्रेरणा अपने परिवार से और साथ ही अपने पड़ोसी दीदियों से मिली है, क्योंकि जब त्योहार आता था और मैं देखती थी उनके घरों के सामने अच्छी रंगोली है और मैं छोटी थी चूंकि, और मुझे वो डॉट वाली रंगोली नहीं आती थी क्योंकि अच्छा। वो पारंपरिक रंगोली होती है।
1: हाँ।
2: तो फिर मैंने देखा कि मुझे फ्री हैंड रंगोली बन सकती है, तो मैंने धीरे धीरे अभ्यास किया और उनसे भी प्रेरणा मिली। साथ ही साथ मेरी माता श्री आज भी अपने घर के द्वार पे लक्ष्मी जी का पैर जो है जरूर बनाती हैं सुबह सुबह रंगोली में। तो यह मेरे लिए खुशी की बात है कि केवल रंगोली मैं अपने घर, अपने आस पास और अपने बिलासपुर या बाहर भी मैंने रंगोली बनाई है, जिसका प्रभाव मुझे अपने घर में माता जी से भी मिलती है देखकर यह प्रेरणा। तो साथ ही रंगोली ना केवल हमारे त्योहारों, शादियों या शुभ कार्यों के दौरान बनाया जाता है, बल्कि आंगन में बहुत सारे माध्यम जैसे कि चावल, आटे, रंगीन रेत, संगमरमर के पाउडर, गुलाल और ताजे फूलों से भी बनाई जाती है। इस रंगोली कला के दौरान मुझे बहुत सारे जो है अलग अनुभव भी हुए हैं, जैसे दिया सजाकर भी

0: रंगोली बनाया जा सकता है।
1: अच्छा।
0: आधुनिक रंगोली में कला में बहुत बदलाव आए हैं, जैसे पहले डॉट रंगोली अल्पना बनाया जाता था,
1: हाँ?
0: अब हम उसे पोर्ट्रेट रंगोली के नाम से भी जानते हैं। चूंकि मैं एक चित्रकार भी हूँ, तो
1: अच्छा।
0: इन बारीकियों को बहुत गहराइयों से समझ सकती हूँ कि कोई भी रंगोली कलाकार जो है अपनी भाव भावनाओं की कल्पना जो है करता है, जिसे वह कला से प्रतिपादित होती है और जीवन में बोलना चाहिए कार्यरत रहने की उससे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि रंगोली केवल रंगों का समायोजन नहीं होता है, रंगोली हमें धैर्य सिखाता है, रंगोली हमें हमारे 5 तत्वों में अर्थ एलिमेंट से जोड़ना भी सिखाता है।
1: अच्छा।
0: और साथ ही साथ हमें एक कलात्मक ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने का एक मंच देता है।
1: अच्छा।
0: तो पर्यावरण से संबंधित साथ ही साथ क्या होता है कि जो अनगिनत जो कल्पना होती है और हमारे जो आसपास साधन होते हैं उसके माध्यम से हम अपने आप को उस विषय को लेकर अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि प्रेरणा मुझे अपने परिवार से और साथ ही साथ जो मंच है वो मुझे मिला है राष्ट्रीय सेवा योजना।
1: अच्छा।
0: क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना ने मुझे एक ऐसा मंच दिया है जो कि ना कि जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय और बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्यों में भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया है।
1: बहुत बढ़िया मोना जी। अब ये हम जानना चाहेंगे कि एक अच्छी रंगोली बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: एक अच्छी रंगोली बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विषय जो मिला है उस पे चिंतन करें,
1: हाँ?
0: साथ ही उसे एक स्केच ड्रॉ कर लें।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद उसका कला संयोजन करें।
1: हुँ?
0: और साथ ही साथ उसकी साइज जो है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है
1: जी।
0: कि किस आकार में आपकी रंगोली बहुत सुंदर दिखेगी। फिर आती है आज, जैसे पहले मैंने बताया कि अल्पना करते थे हम,
1: हुँ?
0: रंगोली आटे का उपयोग करते थे,
1: हाँ?
0: आज फूलों की भी रंगोली बनाई जाती है। आपके पास उस समय जो भी साधन उपलब्ध हैं आप उससे रंगोली बना सकते हैं। क्योंकि एक छोटी रंगोली जो होती है वह किसी भी जगह पे भेदभाव नहीं करती।
1: बिल्कुल।
0: चाहे वो आप त्योहारों में देख सकते हैं, वो चाहे अमीर हो गरीब हो, हर आंगन में दिए सजते हैं और साथ ही रंगोली सजती है। तो आपके पास जो भी साधन है आप उससे खूबसूरत रंगोली अपने घर पर बना सकते हैं। जैसे संगमरमर के पाउडर आते हैं, आजकल रंगीन रेत भी आते हैं। और मैं अदिति जी एक वाक्य बताऊंगी कि पहले क्या होते थे, रंगोली सेट्स नहीं मिलते थे।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माता श्री मेरे लिए घर पे रंगोली बनाती थी और मैं उसका उपयोग करती थी।
1: बहुत बढ़िया।
0: और जैसा कि अभी हम हर्बल गुलाल बनाते हैं, अब देखकर लगता है संस्कार भारती की जो रंगोलियां होती हैं उसमें गुलाल का उपयोग किया जाता है।
1: अच्छा।
0: तो कलर सेट्स की अब कमी नहीं है, जिसमें हम पिगमेंट रंगोली का भी, कलरों का भी उपयोग करते हैं। और पोर्ट्रेट रंगोली को हूबहू आप एक पोर्ट्रेट की तरह तैयार कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने प्लाई पे एक रंगोली बनाई थी।
1: अच्छा।
0: एक क्लाइंट के लिए, हाँ? लेकिन हुआ ये, उसमें भगवान जी बने थे। उसने देखा कि अरे ये भगवान जी को किसने नीचे रख दिया है, उसने उठा दिया, पूरी रंगोली 1 सेकंड में नीचे चली गई। मतलब वो इतनी जीवंत रंगोली दिख रही थी,
1: हाँ।
0: कि उसे धोखा हो गया कि वो रंगोली है या फिर एक पेंटिंग है। तो इस तरीके के कुछ अनुभव हैं जो आज आधुनिकता के साथ साथ हमारी कला में भी परिवर्तन लेकर आया है। रंगोली जो है वो आप वाटर रंगोली भी बना सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जो कि एक मिरर इफेक्ट देता है। आजकल जो और भी रंगोलियां हैं, जैसे कि आप प्लाई के ऊपर बना सकते हैं,
1: हाँ?
0: जो कि आपके होता ये है कि बारिश हुई कुछ हुआ तो आप उस रंगोली को उठाकर अंदर रख सकते हैं,
1: हाँ,
0: और साथ ही फूलों की रंगोली।
1: हाँ, इतनी मेहनत करके रंगोली, हाँ? तैयार होती है तो आप उसकी मतलब सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: ना?
0: बिल्कुल।
1: मोना जी, जैसा कि आपने अपने बचपन की यादें ताजा की, बताया कि पुराने समय में आपने अपनी माँ को देखा है लक्ष्मी जी के चरण बनाते हुए, तो कहीं ना कहीं आप मानती कि आपको वहाँ से प्रेरणा मिली। तो आप हमें और हमारी बहनों को ये बताइए कि पारंपरिक रंगोली और एक आधुनिक रंगोली में क्या अंतर है।
0: पारंपरिक जो रंगोली होती है
1: उसमें,
0: हाँ? हम जैसा जानते हैं कि भारत के हर विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कोलम, अल्पना या मन्ना। तो यहाँ पे

0: जो रंगोली है उसके बनाने के अलग अलग तरीके हैं। अल्पना चावल के आटे से भी बनाया जाता है, साथ रेहन से बनाया जाता है।
1: छत्तीसगढ़ में अघन
0: अघन गुरुवारी में बनाया जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने अदिति जी। और ये मेरी बड़ी माँ बहुत ही बहुत सुंदर तरीके से बनाती थी, और इसमें ज्यामितियों का उपयोग किया जाता है। और ये मैथ्स है, ये इसका वर्णन आपके भागवत गीता में भी किया गया है। तो ये बहुत कठिन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉट रंगोली मेरे लिए काफी आज भी ऐसा होता है कि वो कठिन लगता है। तो ये जो रंगोली है सुनने में देखने में आसान लगता है, लेकिन बनाने में बहुत ही कठिन है, क्योंकि पूरी एकाग्रता के साथ और बहुत समय देना होता है। जब हम रंगोली बनाते हैं तो हमें टाइम का आभास ही नहीं होता, बस एक ही बात रहती है कि इसे कंप्लीट करना है। क्योंकि मेरे साथ मेरे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयं सेवक हैं वो मिलकर बनाते हैं, और मुझे उनसे भी बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो उस रंगोली को बनाते वक्त ये नहीं बोलते, मैम कि कब तक बनाएंगे, हम थक चुके हैं। कभी मैंने अदिति जी ये नहीं सुना। और मुझे गर्व है अपने जितने भी स्वयं सेवक हैं उन पे, हमारे जो बिलासपुर के विभिन्न महाविद्यालय के स्वयं सेवक हैं, जब हम जिला प्रशासन के या किसी जैसे विश्वविद्यालय में या अपने महाविद्यालय में रंगोली बनानी होती है, तो वह मुझे एक बार कांटेक्ट करते हैं और पूछते जरूर हैं कि मैडम इसे हम किस तरीके से बनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि ये रंगोली जो मैंने अपने घर से शुरुआत की थी आज मेरी नहीं मेरे बच्चों की भी पहचान बन चुकी है, और ना केवल छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से बाहर भी बन चुकी है।
1: बुना जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप बहुत सारी जगहों पर रंगोली बना चुकी हैं और जाती हैं रंगोली बनाने के लिए, तो रंगोली बनाते समय आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी है?
0: टाइम कितना लगेगा, लोग पूछते हैं, लेकिन मैं ये बता नहीं पाती हूँ। क्योंकि कलाकार के दिमाग में जब तक वो सही ना बन जाए, परफेक्ट ना हो जाए, तब तक वो कोशिश करता ही रहता है। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो यही रहता है। और अभी तक मेरी सबसे बड़ी जो रंगोली है 8x60 की रंगोली मैंने एक विश्वविद्यालय में बनाई, और वह जनजातियों पे आधारित थी। और उसके अलावा जिला प्रशासन में मैंने काफी बड़ी बड़ी रंगोलियां बनाई हैं। और 2023 में हमने मतदाता जागरूकता पे आधारित एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 1070 रंगोली हमने बनाई थी। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिला प्रशासन का मुझ पे विश्वास कि हम ये रिकॉर्ड बना पाएंगे। विश्वास जो होता है ना दीति
1: जी,
0: वो प्रेम से बड़ा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि जिला प्रशासन ने मुझ पे यह विश्वास दिखाया, और हमने ये कर दिखाया कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ से बना।
1: अच्छा।
0: तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव था, और जिला प्रशासन से ही प्रारंभ हुआ है मेरी बड़ी रंगोली बनाने का, क्योंकि 10x30 की रंगोली मैंने अकेले बनाई थी, जो मेरे लिए एक यादगार रंगोली है। साथ ही साथ अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पे मैंने बिल्हा पे बनाई थी।
1: अच्छा।
0: जिसका दृश्य मुझे याद है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि मांदर बजाते हुए एक चित्र में है।
1: हाँ।
0: तो वो मेरे लिए यादगार रंगोली रहेगी। और इससे अगर मैं और आगे जाऊं तो 2018 में मैंने एक ऐसी रंगोली बनाई थी, जब हमारे एक बहुत बड़ी कंपनी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने उस पे ट्विटर पे ट्वीट किया था कि ये इतनी रियलिस्टिक रंगोली है कि मुझे लग रहा है कि मेरे सामने पर कोई खाने की थाली रख दिया है, क्योंकि उस खाने की थाली में रायता, मटर पनीर की सब्जी, दाल और रोटी रखी हुई थी। वो रोटी इतने अच्छे से फोल्ड थी कि जिसे देखकर कोई ये यकीन नहीं कर सकता था कि वो रंगोली है। और छोटा सा एक वाक्य है, वह रंगोली जो है एक वर्कशॉप में मैंने बनाई थी, उससे जो भी हमें इनकम हुए उससे बच्चों के लिए एक टॉयलेट बनाया गया था। बोलते हैं अदिति जी कि अगर आपका जो उद्देश्य है वो पवित्र हो तो आपको वो काफी ऊंचाई पे ले जाती है।
1: बिल्कुल।
0: फिर 2019 पे ये ट्विटर पे ट्वीट आया, और वो रंगोली वापस घूम के मेरे पास आती है, और ऑल ओवर इंडिया, क्या आउट ऑफ इंडिया से आती है, और बोलते हैं लोग कि देखिए ये रंगोली, उनको नहीं पता था कि ये वही होना है जिसने बनाया है।
1: अच्छा।
0: तो ये जो अनुभव होता है रंगोली जब कोई देखता बोलते हैं ये मेरी मैडम है, ये मेरी बहन है, ये मेरी दीदी है या ये मेरी फ्रेंड है, तो बहुत खुशी होती है कि आज उन्हें

0: औरों का अनुभव महसूस होता है कि मैंने ये रंगोली बनाई है और यही जो प्रशंसा है वो मेरी ताकत है और जो विश्वास है कि ये मोना ने किया है, ये आज मेरे लिए पहचान बन चुकी है। और मैं बोलना चाहूंगी कि माताओं को और बहनों को कि इसे करियर के रूप में भी चुनिए, क्योंकि आज से 20 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुझे प्रोफेशनल बनाएगा, क्योंकि मेरी कला ने मुझे प्रोफेशनल बना दिया,
1: पहचान दी है।
0: तो जब आप किसी चीज को करते हैं उसमें खुशी भी होती है और इनकम भी होता है, तो वो जीवन का एक जीने का एक इतना अच्छा माध्यम हो जाता है कि जिंदगी जुनून भी बनता है और जिंदगी में आप उसे करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और नई ऊर्जा के साथ वह नए कार्यों को करते हैं। क्योंकि मैं अपनी रंगोली को कभी रिपीट नहीं करती, अभी तक यही कोशिश रही है कि कभी डिजाइन रिपीट नहीं करना है, कभी भी जो रंगोली होती है उसमें टाइम नहीं देखना है। आपको जितनी भी विषय होते हैं उसको गहराइयों के साथ और सामने वाले की जो उम्मीद है उसमें आपको खरा उतरना है। तो बस अदिति जी, यही मेरे रंगोली का एक पूंजी है।
1: बहुत बढ़िया मोना जी। अब ये बताइए आप हमें कि नई पीढ़ी में रंगोली कला के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
0: पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमें अपने घर में बनानी चाहिए, घर से शुरुआत करनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे पहले आपने कहा, मुझे बताया कि घरों में त्योहारों में बनाया जाता था। गोबर से लीप कर मैंने देखा है अपनी दादी और नानियों को कि गोबर से लीप कर सामने आंगन में एक छोटा सा स्टार या फिर बोलना चाहिए एक लक्ष्मी पैर जो है बनाया जाता था। तो वो परंपरा कहाँ गई? आज भी हम जब महाराष्ट्रियन के घर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा अल्पना डली होती है, या साउथ इंडियन के घर पे जाते हैं तो हमें अपने घर पे सुबह की शुरुआत जो है रंगोली से करनी चाहिए, क्योंकि वही एक परंपरा है, वही रीति रिवाज है जिसे देखकर हमारे बच्चे सीखते हैं।
1: जी,
0: अब इस छोटी सी रंगोली को किस तरीके से हम घर में त्योहारों में और शुभ कार्यों में अपने घर पे जरूर एक रंगोली बनाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि युवाओं को इस परंपरा को आगे ले जाना चाहिए और निरंतर छोटा सा अभ्यास आपको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है, जिसका उदाहरण मैं हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने घर पे इसी तरीके से रंगोली का अभ्यास करते रहें।
1: मोना जी, क्या आपने रंगोली से संबंधित किसी प्रतियोगिता में भाग भी लिया है? आपका अनुभव कैसा रहा?
0: अदिति जी, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैंने एक राष्ट्रीय स्तर पर कला संगम था हमारे बेंगलुरु में, हमारे अंतर्राष्ट्रीय आश्रम है, जहाँ मैंने अक्का महादेवी का बनाया था। तो वह रंगोली मेरे लिए यादगार रही, क्योंकि पूरे भारत से 30 कलाकार वहां आए थे और समरसता विषय पर उन्होंने बनाया था। समरसता पुरुष पे आधारित मैंने जो रंगोली बनाई वो मुझे जीवन पर्यंत याद होगी। दूसरा जो रंगोली है वो है हमारी, जैसे मैंने बताया कि एक हमारे जो ट्विटर पे ट्वीट आया था वह रंगोली है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की मैंने एक रंगोली बनाई थी, जिस पे उन्होंने ट्विटर पे बहुत ही अच्छा संदेश दिया था, जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी। उनका संदेश था कि मेरी सुंदर चित्रकृति बनाकर अपनी कला, मेहनत और स्नेह की अद्भुत मिसाल पेश की है। युवा पीढ़ी का यह उत्साह और रचनात्मक अभिव्यक्ति सचमुच प्रेरणादायी है।
1: वाह, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और
0: बिल्कुल। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यह संदेश दिया था हमारे युवाओं को। यही जो प्रशंसा होती है कलाकार के लिए पूंजी होती है और हर समय जीवन में नया करने का उत्साह भर देती है।
1: मोना जी, आप हमारी बहनों के कार्यक्रम में आई हुई हैं, तो आप हमारी बहनों के लिए एक छोटा सा संदेश दें।
0: जी जरूर, मैं चाहूंगी कि हर घर आंगन में अपनी बहनों से यही विनती है कि वह सुबह की शुरुआत अपनी छोटी सी रंगोली से करें और धीरे धीरे यही जो परंपरा है ना केवल बेटियों में बल्कि बेटों में भी डालें, और वह रंगोली जो है आपके घर की सुख और समृद्धि के रास्ते खोल देता है।
1: मोना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रंगोली कला के बारे में इतनी सुंदर और प्रेरणादायक बातें हमारे साथ साझा की, आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी।
1: हम उम्मीद करते हैं बहनों कि रंगोली कलाकार मोना केवट जी से ये भेंट वार्ता आपको जरूर पसंद आई होगी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी।

0: संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उनके हाथों में काम नहीं, कलम और किताब होनी चाहिए। कल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस विषय पर कुछ जानकारी दे रही है अंकिता साहू।
3: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम अंकिता साहू है। कल यानी 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आइए एक छोटी सी प्रस्तुति के माध्यम से समझते हैं कि बच्चों के हाथ में काम नहीं बल्कि किताबें और सपने होने चाहिए। बचपन जीवन का सबसे सुंदर दौर होता है। यह समय सपने देखने, पढ़ने, खेलने और आगे बढ़ने का होता है, ना कि काम के बोझ तले दबने का। दुर्भाग्य से आज भी कई बच्चे शिक्षा और खुशहाल बचपन से वंचित होकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। बाल श्रम न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी बाधा है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चे के हाथ में औजार नहीं बल्कि किताब हो, हर बच्चे की आंखों में थकान नहीं बल्कि सुनहरे भविष्य के सपने हो। याद रखिए, बचपन है अधिकार उनका, शिक्षा और प्यार उनका। बाल श्रम को दूर भगाएं, हर बच्चे को आगे बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ दीजिए हर बच्चे को सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल बचपन का अधिकार। धन्यवाद।
2: बहनों, आइए अब चलते चलते चलते हैं गीत की संगीत की दुनिया में। इस गीत के साथ गीत लिया है हमने फिल्म लुटेरा से। इस गीत को स्वर दिया है मोनाली ठाकुर, अमिताभ भट्टाचार्य ने। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी। और सुनना चाहे हमारी इन बहनों ने रानीगांव से ललिता, सुनीता और कविता, रतनपुर से हमारी सखियाँ हैं सुशीला, शालिनी और प्राजक्ता। बहनों, हमारी इन बहनों की तरह आप भी हमें अपने गीत सुनने के लिए फरमाइश लिख भेज सकती हैं। फरमाइश लिखने के लिए, गीतों की फरमाइश लिखने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mahilasabha@gmail.com। बहनों, आप हमें पत्र भी लिख सकती हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है वही जाना पहचाना, कार्यक्रम चिट्ठी मिली, जिसका प्रसारण गुरुवार को रात 8 बजे किया जाता है। कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, नूतन कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। पिन है 495006। और आइए बहनों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो बहनों, आज का आपका और हमारा साथ यहीं तक। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अदिति को अनुमति दें। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 7:10 पर विषय होगा साइंस एंड टेक। 7:45 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात 8 श्रोता सुनेंगे अपने पत्रों के जवाब पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली में। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे और महावीर बरगाह की। इसके बाद आनंद लिया जा सकता है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुनने का प्रसारण किया जाएगा 6:20 पर और शाम 7:00। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे 9:15 पर। ये तो थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी।

कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा खरीफ उड़द की उन्नत खेती। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा 7:05 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा यादों के झरोखे से। इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम गुंजे स्वर गांव के श्रोता सुनेंगे कल सुबह 10:00। इसमें कलाकार होंगे दुल्ली चंद, टंडन, फतेह राम और दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथी। कल सुबह 10:30 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आयोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा कल सुबह 11 बजे। सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे इनसे मिलिए। कल शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। कल का विषय होगा जन विश्वास। इसके बाद आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। कल रात 8 बजे पेश किया जाएगा सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार होंगे मन्ना डे। रजनीगंधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात 8:15 पर। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का समय होगा कल शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे। कल शाम 5:05 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर परमेंद्र कुमार केशरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। कल शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा बचपन को संवारने में सहयोग करें, नशा पान से दूर रहें। साथ ही क्रम होगा स्वास्थ्य पत्रिका का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:10 होने को है छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हर नीति आयोग के शासी परिषद के बैठक में कहिन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली दो दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आही। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग कन्ही बैठक। और प्रदेश के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुए है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन है कि दुनिया ये बखत अस्थिरता के दौर ले गुजरत है, फिर भारत आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प के संग विकास के रद्दा में आगू बढ़त है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठक करत श्री मोदी हकीन कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य कोति बढ़त है तो ऐसन बेरा मा केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक जिम्मेवारी बढ़ जाते। उमन कहिन कि राज्य के बीच सहयोग गोटबात और विचार साझा होना चाहिए। संगे संग नीति आयोग एमा मदद करे खातिर सबले बने भूमिका निभा सकत है। प्रधानमंत्री हकीन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौशल विकास और युवा मन बर रोजगार दिवाना ये प्राथमिकता बने रहना चाहिए। कृषि और स्टार्टअप लले के विज्ञान और नवाचार नारी शक्ति सबो क्षेत्र में अपन योगदान देवत है। एकर सेती राज्य मल्ला माइलोगिन के शिक्षा कौशल विकास सुरक्षा और सशक्तिकरण ला प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसो के बैठक के विषय हरे 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सबो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग लेवत हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 12 जून के दो दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उमन प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रम के संगे संग विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संगरही संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग बैठक करही। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह काली मंझनिया रायपुर के सड्डू क्षेत्र के अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होही। एकर बाद संझा कुन राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होही। संझा के ही श्री सिंह राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग बैठक करही। केंद्रीय मंत्री अवैया दिन 13 जून के कलेक्टोरेट परिसर के बाबा साहेब अंबेडकर चौक में सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होही। और खालसा स्कूल के आगू ऑक्सीजोन में पौधारोपण करके बूढ़ा तरिया तीर विशेष जन

संपर्क कार्यक्रम में भाग ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह कहिन है कि किसान मन के विकास सरकार के सबले पहली प्राथमिकता हरे। सरकार उखर जीवन ला सरल बनाए के हर संभव प्रयास करत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ह कहिन कि देश के खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि के रीढ़ हले। उमन कहिन कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना किसान मन के रक्षा करत है, उन्हें किसानी ला और मजबूत बनावत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हां आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में राखे गए कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन वर्चुअल रूप ले करीन। ये कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत आने बड़का अधिकारी मौजूद रहीन। ये मौका में श्री वैष्णव हां सामरिक और संरचना में ध्यान देवत आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सीमावर्ती क्षेत्र में संचार व्यवस्था ला मजबूत करे बर आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सरकार के प्रतिबद्धता डालीन। उन्हें उमन समय के संग परिवर्तन में बल दीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहने कि देश के 140 करोड़ लोगन के आकांक्षा जरूर पूरा होगी। उमन कहन की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यह देश के भरोसा ला मजबूत करे है। नई दिल्ली में एनडीए के बैठका में बोला तो मन कहिन कि बछर 2014 में आशा के जौन किरण जागे रही वो आज नवा आत्मविश्वास के किरण में बदल गए है। उमन यहू कहिन कि पहली गांव देश के जनता है देखे है कि जब कोई सरकार सही सोच ले चलाए जाते तो विकास घलो तेजी ले होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बच्छर पूरा होए में नई दिल्ली के भारत मंडपम में राखे गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्री मोदी ला बधाई दीन। उमन कहिन की पाछू 12 बच्छर जनजाति समाज के सम्मान सशक्तिकरण और विकास पर स्वर्ण काल रहे है। मुख्यमंत्री कहिन की केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास ले छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या कमती हुए है। उमन कहिन की जनजाति क्षेत्र में बुनियादी सुविधा कनेक्टिविटी और आजीविका के मौका तेजी ले बढ़वार होवत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगु बढ़ बाचे समाचार को थी। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर कहिन है कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नो है भलुक राष्ट्र निर्माण के आधार हरे। स्वच्छ स्वस्थ और विकसित भारत बनाए खातिर हर एक नागरिक के भागीदारी जरूरी है कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन के स्वरूप नहीं ली तब तक विकसित भारत के लक्ष्य पूरा रूप ले साकार नहीं हो सके। श्रीमती ठाकुर है काली बिलासपुर के पुराना सक्रिय क्षेत्र में राखे गए स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता करीन। ये मौका में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू समेत आने जनप्रतिनिधि घलो मौजूद रहीन। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा कहिन है कि गांव मन के बेरोजगारी मोबाइल जिनिस के लत जैसन चुनौती ले निपटे खातिर राज्य सरकार कौशल विकास में विशेष जोर देवत है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम में बोला श्री मिश्रा कहिन कि सरकार 15 ले 29 बच्छर के युवा मन ला रोजगार और स्वरोजगार ले जोड़े पर अब 6 महीना में विशेष कार्य योजना तैयार कर ही। रायपुर जिला में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाए पर मिशन उत्कर्ष में काली राजधानी में सबो प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य मन के बैठका हुई। बैठका में कलेक्टर डॉक्टर गौरवसी सरलक कमजोर नतीजा देवैया स्कूल के समीक्षा करे के संगे संग विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावक मन ले फीडबैक लेके निर्देश दीन। तो मन की इनकी कमजोर परीक्षा के नतीजा फर्जी पंजीयन नियमित कक्षा के अभाव और आने गड़बड़ी में कड़ा कार्रवाई करे जाही। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग 28 दिन अधिकारी मन के तबादले है। विभाग कोती ले जारी आदेश के मुताबिक जिला के शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहायक संचालक और प्राचार्य मल्ला आने आने जिला और कार्यालय में नवा जिम्मेवारी सौंपे गए है। महासमुंद रायपुर बिलासपुर समेत कई जिला में नवा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के नियुक्ति करे गए है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुए हैं। उमन श्रीलंका में हुवैया टी20 और वन डे सीरीज के दौरान
उप कप्तान के रूप में टीम में भाग लिही। वित्त मंत्री ओपी चौधरी है महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होए में बधाई और शुभकामना देवत कहीं कि ये उपलब्धि उखर सरल।

0: मेहनत, अनुशासन और खेल भर समर्पण के परिणाम हवे। ओमन यहू कहिन कि एखर ले प्रदेश के आने युवा खिलाड़ी विशेष रूप ले नोनी मन ला खेल मा आगू बढ़े और बड़े सपना देखे बर प्रेरित करही। राज्य सरकार ह विधायक मन बर अपन विधानसभा क्षेत्र मा पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा लेके अनिवार्यता के आदेश मा फेरबदल करे हे। अब कोनो भी विधायक अपन विधानसभा क्षेत्र ले बाहिर दिगर जिला मा पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा ले सकी। इस संबंध मा सामान्य प्रशासन विभाग ह सबो जिला कलेक्टर मन ला चिट्ठी जारी कर दे हे। गौरेला पेंड्रा जिला के पुलिस अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 जिन सदस्य मल्ला गिरफ्तार करे है। इकहत्तर ले करीबन 38 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, चोरी के रकम ले बिसाए गए चौपहिया गाड़ी, 2 फटफटी, मोबाइल फोन सब चोरी मां बउरे गए आने उपकरण जब्त करे गए है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मन गजब दिन ले चोरी के घटना ला अंजाम देवत रहीन। आखिर मां प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री ह नीति आयोग के शासी परिषद के बैठक मा कहिन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 2 दिवसीय दौरा मा छत्तीसगढ़ आही विकसित भारत संकल्प सम्मेलन मा संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग करही बैठक और प्रदेश के जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 हो है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM Band 103.2 MHz पर। इस समय 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए अपना फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनें।

ई मेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए रत्ना का नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद से। राजकोट से हैं जूली जगदीश गुजराती, प्राची प्रवीण पुजारी। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा। लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। लोहारीडीह जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा, खुशांत साहू, निशांत। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रानाज चाहत। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोट के, नंदा हनुमान बोट के। बरका खाना से हैं अफजाल ताश, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहिनी, मोहम्मद अफजल मल्लिक। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन। दिल्ली से हैं आसमा परवीन, आमना वली भाई अंसारी। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल। सरगांव बाजार से हैं नसीब मोहम्मद, हबीब इरफान मोहम्मद। डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अलकबीर। लुद्रा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श आतिका। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष। लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद।

मदन सारी गुलाम साबिर राहिर महराज जहां टोरवाल नवा शहर पंजाब से है। गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी। फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। पूर्णा जंक्शन मुस्तानपुरा से हैं अनंत भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा। उत्की कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म लोफर का गीत। लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

0: इस गीत के बाद ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक और बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
0: ईमेल करें कि सुने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप सभी की पसंद का अगला गीत। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल। मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिया, राधिका, अनिष्का, तन्मय। सौंगा मंगलोर से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हिंश कुमार। पूरी फाठा कलतरा से दिलीप चंदन, चोबाराम यदु, निखिल, वसुंधरा, प्रांजल। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्किन। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्व, हिमाक्ष। कुमार गली कोलगांव से पांडे चंदन, उषा, प्रतीक्षा चंदन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल। ये हैं पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष, रोहित राज। गांवनथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता, गीता। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिश शाहिद। सादुलशहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू और मयंक।

चिरमिरी कुरासिया कालरे से इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद कालिंद्री लहरे तिलहारा से हैं प्रकाश पहरकार नर्मदा सुजाता पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत और मनु खैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा ऋषभ गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली धनंजय दिल्ली से सोनम सना अदीबा दुर्ग से आरसी कामड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल जालंधर से रोशन जहां मन्नत जहां इशरत और पूरा परिवार। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म कामचोर का ये गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की, इंदिवर की रचना है राजेश रोशन का संगीत।

इसके बाद लीजिए सुनिए ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम में अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रितेश। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना, ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता। मामलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडुकार। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत, कृष्टि। वड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। लसूडिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र। पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौंसलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम। दतरंगी भाटापारा से हिरमणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी। पैठण से सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया। मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस, एकांश। अड़ान नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश। ये हैं यवतमाल से पंजाब रामटेकी, यशोधरा, श्राव्या। बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजवती, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रायन, अब्दुल सलाम रायन। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार, बबलू साहू। और ये हैं जिला राजनांदगांव से जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, चिंपा, कपिल, पूजा परिहार। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म वापस का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में। लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म वापस के इस गीत के साथ ही मेल करेंगे सुनी कार्यक्रम बस यहीं तक। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: घर सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्ल ये रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन

0: बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिवसीय प्रवास आएंगे, प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंड लेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर काइकिंग केनोइंग प्रतियोगिता, और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित परिकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी किया।
4: मैं निवेदन आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
3: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह कल दोपहर रायपुर इलाके में स्थित अस्पताल में जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कल ही शाम श्री सिंह राजधानी

में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री अगले दिन 13 जून को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद खालसा स्कूल के सामने ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सिंह सदर बाजार के पास बूढ़ा तालाब पहुंचकर विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छ जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सक्री क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तुखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने विधायकों के लिए अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों से सेवाएं प्राप्त करने की अनिवार्यता के आदेश में संशोधन किया है। अब कोई भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे जिले में पदस्थ कर्मचारियों की भी सेवाएं ले सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध सांसदों के मामले में लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्ययोजना तैयार करेगी। उन्होंने UNDP को पर इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए देशभर के रेल स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। जहां भी सुरक्षा संबंधी कमियां मिलेंगी, वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे। रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें यह जांच करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ एजेंसियों और राज्य फायर विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। नवा रायपुर स्थित सेंडलेक में कल से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग किनोइंग प्रतियोगिता शुरू होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग किनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायकिंग किनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में आयोजित होने जा रहे T20 और वनडे सीरीज के दौरान उपकप्तान में टीम का हिस्सा होंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। श्री चौधरी ने कहा कि उनके देश के अन्य युवा खिलाड़ी, विशेषकर बेटियां, विभिन्न खेलों में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित होंगी। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 38 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, चोरी की रकम से खरीदा गया 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन सहित चोरी में किए गए अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। रायपुर जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मिशन उत्कर्ष के तहत कल रानी में सभी निजी प्राचार्यों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने लगातार कमजोर परिणाम देने वाले विद्यालयों की समीक्षा करने के साथ ही विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावकों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमजोर परीक्षा परिणाम, फर्जी पंजीयन, नियमित कक्षाओं के अभाव और अन्य अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष का औसत परिणाम 71% से अधिक और 12वीं का लगभग 85% रहा, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। हालांकि कुछ निजी विद्यालयों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल

मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। और नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, एक नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार।

छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंधलेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कैकिंग क्यूनोइंग प्रतियोगिता और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7 बजने को हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गे सुने का शेष भाग। ईमेल करें गे सुने कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म बेटी बेटे का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की। लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य। बुड़गान से राम दुलारी, प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग। बरेली कैंट चनहटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागनी मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन पल्लवी, राजेश्वरी। ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव, एसके, पप्पी। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी, नीरज, शुभम, सौरभ। बिलासपुर से शनुलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। बोरसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, भीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु। ये हैं खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवदन सिंह पैकरा, घुड़नी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखनी सदफ, आरजो जोही, इमरान, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, आशु, मंतशा और परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली से प्रेमिला, हेमा, अंतरा सिंह। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली, आसमा वली। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र, जोई, यामिनी, उमा। हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी। मडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया। धुराबांधा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज। बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र, प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र और उनका पूरा परिवार। ये हैं लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी भारती। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा, दीपक।

बंगाली श्लोक। राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति ख्याति, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू पप्पी, तेलंगाना निजामाबाद से शेखर लाभक्ष, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र, इंदौर मध्य प्रदेश से है नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी, मालती चौधरी, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम चोबराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश डाली, पूर्वेश, नरविल महाराष्ट्र से हैं पीएस धावकर, निर्मला विशाल, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, बिमला, इंदु पार्वती, हिमांशु, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची, प्रवीण, वार्ड नंबर एक भोपाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर, दीक्षांत और अर्पिता। चलिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म बेटी बेटे का ये गीत।

फिल्म बेटी बेटे के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग अब समाप्त होता है। रत्ना को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 7:10 होने को हैं। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। आज का विषय है साइंस एंड टेक।

0: किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश हैं?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर है आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मपत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई

0: देता है और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र

0: प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर
0: अंतर
1: नहीं?
0: यह है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई है।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता, बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही
0: कुछ
1: है।
0: तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे
0: हकीकत
1: ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब
0: देखो,
1: अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो
0: नैरेटिव
1: रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे उस जमाने में। विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए, जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए, जिस ढंग के कदम उठे कोई कल्पना करता है?

0: अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले, अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के, ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे
0: नहीं,
1: लोगों को।
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहे। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं, कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं।
1: वाह,
0: तो
1: अच्छा
0: दो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार पूल करते
1: देखिए,
0: हुए।
1: ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को।
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, एआई नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए एआई का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक नहीं, अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। जैसे एआई के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे
1: जो अल
0: तो
1: नैनो की हम बात कर रहे हैं।
0: हमने अलनीनो के भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट की पहचान की है जहां कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टि

0: और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है।
1: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब यह देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति यह देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हों, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
0: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या है?
1: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
0: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से, जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है, तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से

0: भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पे रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनर्जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेज़ों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ AR/VR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए लोग

0: पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5,000 वर्ष पुरानी साइट है। 5,000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉक यार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसके उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपने ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे। और आज जब आप इस दौर में ही संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियाँ, वो अमूल्य चीजें, आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था, महिलाओं के लिए सामने आ रहा है वही संस्कृति, आज हमारी दीपावली का त्यौहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना, सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने

0: के लिए लेके जा रहे हैं, तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे, विषय था साइंस एंड टेक। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है,

इस गीत को हमने लिया था फिल्म घुंघरू से। आवाजें थी मनहर उदास और साधना सरगम की। अनजान के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में फिल्म प्रेम नगर का ये गीत। रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है एच डी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अंतिम गीत। फिल्म का नाम है महबूबा। आवाजें हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

फिल्म महबूबा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, रात के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए अपने पत्रों के जवाब, पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली में। प्रस्तुति है मोनाली ठाकरे और महावीर बरगाह की

0: चिट्ठी मिली सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोनाली ठाकरे
1: और महावीर बरगाह का
0: नमस्कार। श्रोताओं, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके प्यारे प्यारे पत्रों के साथ और मेल के साथ जो आपने भेजे हैं आकाशवाणी बिलासपुर के लिए, और भेजा है आपका ढेर सारा प्यार।
1: मेल मैं पढ़ता हूँ
0: जी।
1: और भेजने वाले हमारे साथी हैं कतिया पारा जूना बिलासपुर से, सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। और ये लिखते हैं कि 28 मई को चिट्ठी मिली, पेश किया जिसे मोनाली ठाकरे और महावीर बरगाह भाई ने, जो काफी श्रोताओं के ईमेल शामिल किए, बहुत बढ़िया रहा, दोनों को बधाइयां देते हैं। साथ ही 31 मई को किसान वाणी में आप मन के गीत प्रस्तुत हुआ, नंदू भैया को बधाई दे रहे हैं, सुमधुर गीतों के लिए धन्यवाद। और किसानों को खेती बाड़ी के बारे में जानकारी मिली। 1 जून को तुहर गोठ हमर गीत प्रस्तुत हुआ, हमारे प्रिय मित्र अंशुल गुलकारी भाई को बधाइयां भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ी भाषा में बात किए, मन खुश हो गया, ऐसा लिखते हैं। 3 जून को हेलो आपकी पसंद पेश किया प्यारी बहना पद्मामणि ने, खुशी की बात यह है कि इसमें नए श्रोता शामिल हुए, ऐसा लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि 4 जून को चिट्ठी मिली, सुप्रिया जी और सुनील चिपड़े ने प्रस्तुत किया, इसे पसंद कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि 5 जून को रात 8 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम सुनने को मिला, जिसमें पूर्व उद्घोषक हरिश्चंद वाधिकार से बातचीत हुई, सुनकर अच्छा लगा। 7 जून को माटी के स्वर अच्छा लगा, सीमा साहू जी को बधाई दे रहे हैं। 7 जून को आप मन के गीत प्रस्तुत हुआ, राजू भैया को बधाई दे रहे हैं। 8 जून को तुम्हार गोट हमार गीत रिकॉर्डिंग नहीं होने के बावजूद मानस तिवारी जी ने श्रोताओं के पत्रों पर सुंदर छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनाया, इसके लिए भी बधाई। 9 जून को रायपुर से अनुप्रसारित मोर भुइयां में कवि गोष्ठी, इन्हें अच्छा लगा। इन तमाम सुंदर प्रस्तुति के लिए ये आकाशवाणी परिवार को बधाइयां दे रहे हैं और शुभकामनाएं।
0: महावीर जी, हमारे सारे ही कार्यक्रम की समीक्षा इन्होंने लिख भेजी है, ये हमारे सारे कार्यक्रम मतलब सुनते हैं और पसंद भी कर रहे हैं। इन प्यारे प्यारे शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ जो आया है, छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास और रानी मानिकपुरी जी लिखते हैं, 4 जून को प्रसारित चिट्ठी मिली, कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसमें सारे पत्रों के उत्तर दिए सुप्रिया जी और सुनील चिपड़े जी ने, काफी अच्छा लगा। साथ ही 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये लिखते हैं कि एक छोटी सी शिकायत है कि हमारा मेल ईमेल करे गीत सुने में शामिल नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको बता दें कि ईमेल करे गीत सुने में हमारे पास ढेर सारे मेल आते हैं, जिसकी वजह से सारे नामों को शामिल करना हमारे उद्घोषक के लिए संभव नहीं हो पाता। तो हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप इस बात को समझें, आप हमें मेल करते रहिए, 2-3 दिनों के अंतराल में तो आपका नाम आ ही जाएगा। पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मोनाली जी, हर कार्यक्रम के शुरुआत में कुछ हम सिग्नेचर ट्यून बजाते हैं, उसी तरह से कुछ एक पत्र हमारे श्रोताओं के रहते हैं कि उन्होंने भी एक अपना सिग्नेचर ट्यून बना रखा है, जैसे ये है वंदे मातरम लिखते हैं हर पत्र या ईमेल के पहले।
0: माखीजा जी,
1: जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। भेजने वाले साथी हैं रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और उनका पूरा परिवार। ये भी पूरे सप्ताह भर की कार्यक्रमों की समीक्षा लिख भेजे हैं, जिसमें लिखे हैं कि 6 जून को कार्यक्रम रजनीगंधा प्रस्तुत किया रत्ना जी ने, जिसे सुनकर अच्छा लगा। और इसी तरह से 8 जून को क्रम तुहर गोठ हमर गीत पेश हुआ, प्रस्तुतकर्ता मानस तिवारी को बधाई दे रहे हैं। आगे लिखते हैं कि 10 तारीख बुधवार को हेलो आपकी पसंद प्रस्तुत किया सुनील चिपड़े भाई ने, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आगे लिखते हैं कि 5 जून

0: को रात 8 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के उद्घोषक हरीश चंद्रवा अधिकार जी से बातचीत सुनने को मिला। सुंदर प्रस्तुति और संयोजन के लिए संज्ञा टंडन को बधाई और सुप्रिया भारतीयन को जी को भी।
1: आपको भी पत्र लिखने के लिए धन्यवाद। आप ये सारे कार्यक्रम सुनते हैं, ये सुन के हमें सच में बहुत अच्छा लगता है और हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। तो जब भी आप कार्यक्रम सुने, पसंद करें, हमें जरूर बताएं और हमारा हौसला बढ़ाएं।
0: अगला मेल कौन सा है
1: जी? ये आया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी का। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी बिलासपुर के सभी कार्यक्रम ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर होते हैं। आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं तो पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन के माध्यम से सुना जाता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि तकनीक बदल रही है, हम नए नए टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं तो आकाशवाणी भी बदल रहा है। जैसे पहले आप सिर्फ रेडियो के माध्यम से ही हमें सुन सकते थे, आज आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कर आकाशवाणी का कोई भी चैनल सुन सकते हैं। आपको बस करना यही है कि अपने ऐप स्टोर पे जाना है, न्यूज ऑन एयर ऐप इसको डाउनलोड करना है, उसमें आप रेडियो सिलेक्ट करके आकाशवाणी बिलासपुर पर क्लिक कर सकते हैं और हमारा कोई भी कार्यक्रम किसी भी वक्त सुन सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं।
0: जी हाँ, और यही कारण है कि सिर्फ बिलासपुर क्षेत्र से नहीं बल्कि देश और बाहर विदेशों से भी हमारे श्रोता मेल भेजते हैं और कार्यक्रम सुन पा रहे हैं।
1: जी
0: अगला मेल आया है दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा यदु, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु का। ये लिखते हैं कि 28 मई की प्रस्तुति के लिए मोनाली ठाकरे और महावीर वर्गा द्वारा प्रस्तुत चिट्ठी मिली, कार्यक्रम बेहद पसंद आया, प्रस्तुति के लिए बधाई।
1: आपको पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली मेल की तरफ जो आया है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू का। ये लिखते हैं 5 जून का सुबह 8:30 का इनसे मिले कार्यक्रम, इन्हें काफी अच्छा लगा। इसमें पद्मश्री से सम्मानित सुनीता गोडबोले से रमाशंकर जी की बातचीत काफी पसंद आई, बहुत अच्छी और सारगर्भित बातें इन्हें इस कार्यक्रम में सुनने को मिली। सटीक प्रसारण के लिए आकाशवाणी बिलासपुर को भी ये धन्यवाद दे रहे हैं। तो आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: अगला मेल आया है, भेजने वाले हमारे साथी हैं देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। पहले तो ये कहते हैं कि सभी प्रस्तुतकर्ताओं से निवेदन है कि कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले अपना नाम जरूर बताएं।
1: जी हमने तो बता दिया था।
0: मेरा ख्याल है कि ये उद्घोषक साथी कंप्यूटर साथियों के लिए भी शायद लिख रहे हों।
1: बिल्कुल, आपकी ये बात हमने सभी उद्घोषकों तक पहुंचा दी है, तो इसके बाद वो जब भी कार्यक्रम शुरुआत करेंगे उसके पहले अपना नाम जरूर बताएंगे।
0: हमारे यही साथी आगे लिखते हैं कि 7 जून को प्रसारित कार्यक्रम माटी के स्वर में बहुत सुंदर गीतों की प्रस्तुति हुई, अधिक पत्र शामिल करने के लिए प्रस्तुतकर्ता सीमा साहू जी को बधाई दे रहे हैं।
1: इन्हीं के साथ कुछ और भी श्रोता हमसे जुड़े हैं, जैसे देवरी भाटापारा से गंदुला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर और फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार, कुमारी हाव्या और कुमारी टानिया। तो इनके साथ ये हमें लिखते हैं कि 7 जून को प्रसारित छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर बहुत ही सुंदर लगा, गीतों की प्रस्तुति सुन के बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ता सीमा साहू जी को बधाइयां दे रहे हैं। इसी दिन शाम को ग्राम सभा में छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत सुना, जो काफी पसंद आया। इसमें विश्व पर्यावरण दिवस पर बातचीत की गई और गाने भी सुनाए गए। तो ये पसंद कर रहे हैं प्रस्तुतकर्ता राजू भैया को आकाशवाणी बिलासपुर के साथ ये सारी बधाइयां दे रहे हैं। और इसी दिन ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम, जिसकी प्रस्तुति अंतरा चक्रवर्ती जी की थी, ये भी ये काफी पसंद कर रहे हैं और बधाइयां भी दे रहे हैं। इन सारे कार्यक्रमों को अपने शब्दों में पिरोकर हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल आया है, भेजने वाले हमारे साथी हैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू
1: जी।
0: ये लिखते हैं आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित चिट्ठी मिली और ईमेल करें गीत सुने, युवा जगत, माटी के स्वर, इस सभी कार्यक्रमों को सुनकर हमारा मन आनंदित हो जाता है और इसी तरह से मनोरंजन करते रहें। इससे हमें सीख भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। सफल प्रसारण के लिए आकाशवाणी परिवार को कोटिशा हार्दिक बधाई। और आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त श्रोता और आकाशवाणी परिवार को भी बधाई। कार्यक्रम सुनने के लिए और ईमेल भेजने के लिए हम आपको भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं।
1: और महावीर जी लेते हैं अगला ईमेल जो आया है नानघाट कातल बोर्ड से, भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत लिखते हैं।
0: क्या लिखते हैं?
1: साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी मिली, जो हमें बहुत पसंद आता है, सुप्रिया जी और सुनील जी को बधाइयां दे रहे हैं। 7 जून को कुष्ठ रोग के बारे में डॉक्टर दीदी से सुप्रिया जी की बातचीत काफी अच्छी लगी। साथ ही 7 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की खुशी में पूर्व उद्घोषिका कल्पना से दीपक हटवा जी की बातचीत भी काफी अच्छी लगी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर अलग अलग विषयों में जो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं वो भी काफी पसंद कर रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम आप सुन रहे हो, पसंद कर रहे हो, ये सुन के हमें बहुत खुशी हो रही है। पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मेल है नवागढ़ कटाई से, भेजने वाले श्रोता हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा। ये लिखते हैं कि 10 जून को कार्यक्रम आज सुबह में सुनील चिपड़े जी द्वारा पेन पर रोचक जानकारी, संस्कार की बातें, हमारे जीवन में हमारा अधिकार और सदुपयोग की बातें, और साथ ही साथ यादों के झरोखे से में पुरानी गीतों के मनोरंजन की सफल प्रस्तुति के लिए धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं
1: जी। महावीर जी देखिए, हमारे जो सारे उद्घोषक हैं वो किसी भी चीज को लेके बात कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे पेन जैसा हम रोज उसका इस्तेमाल करते हैं, पर उसके बारे में भी रोचक जानकारी दी जा सकती है और श्रोताओं को वो पसंद भी आता है
0: और बकायदा उसके लिए लिखे हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं
1: जी। लेते हैं अगला मेल जो आया है सिंगारबाड़ी घुटकू से। भगतराम पटेल, किशन, सोनम और मानवी पटेल जी लिखते हैं कि 5 जून को प्रसारित हेलो किसानवाणी कार्यक्रम जिसका संचालन महंगू भैया ने किया था वो काफी अच्छा लगा, लाभप्रद लगा। साथ ही 6 तारीख का सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा। 9 जून को प्रसारित मोर भुया कार्यक्रम जिसमें विभिन्न कवियों द्वारा बेहद ही रोचक कविता पाठ प्रस्तुत किया गया काफी अच्छा लगा, कर्णप्रिय लगा। प्रस्तुतकर्ता महेंद्र साहू जी को बधाइयां दे रहे हैं और इन सारे कार्यक्रम के सफल प्रसारण के लिए आकाशवाणी बिलासपुर को सहृदय बधाइयां भी प्रेषित कर रहे हैं। मेल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल आया है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविन्द्र रौनक सेन का
1: जी। क्या लिखते हैं?
0: ये लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ के पवन भुइयां बिलासपुर ले हमार मयारू संगी संगवारी बहनी भैया मन के गुरतुरहा शक्कर गुड़ औ मदरस कस मया के बोली कार्यक्रम सुने के मिलते, एकर बर मन हा गदगद हो जाते, अति सुंदर लागते। चिट्ठी मिली कार्यक्रम के पिटारा मा सकेल के हमर बीच परोसिन सुंदर मीठ मीठ बोली के द्वारा मयारू बहनी सुप्रिया और जेकर संग देत रही है सुनील भाई मन, सुंदर आवाज सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई भेजा थे। आगे लिखते हैं कि रविवार को आप मन के गीत कार्यक्रम राजू भैया ने प्रस्तुत किया, इसके लिए बधाई भेज रहे हैं। इसी तरह कार्यक्रम सुनते सुनते ये सप्ताह कैसे निकल गया ये हमें पता ही नहीं चला। वाह, इतने गुरतुर गोड बोली शक्कर सब कुछ तो आप ही हम भेज दे रहे हैं हमारे श्रोता भाई, तो पत्र लिखने के लिए कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से संपर्क बनाए रखें
1: जी। अगला मेल भेजा है मगरपारा बिलासपुर से रेणु शुक्ला, राजेश कुमार, वैभव और विनी ने। ये लिखते हैं कि 10 जून का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम सुनील चिपड़े जी की प्रस्तुति में अच्छा लगा, माटी के स्वर और आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत ही जानदार लगा, सदाबहार नगमे और यादों के झरोके से कार्यक्रम सुबह सुबह ताजगी लाता है, तो ये कार्यक्रम हम आपके लिए ही लाते हैं, आप इसको पसंद कर रहे हैं ये सुनके बहुत अच्छा लगा। मेल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, जब श्रोता कार्यक्रम की समीक्षा लिख भेजते हैं तो मन उत्साह भर जाता है और नए कुछ करने की इच्छा होती है। और अगला मेल है चिरमिरी कुरासिया काली से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे का। इन्हें 7 जून को सुनील चिपड़े जी द्वारा प्रस्तुत विश्व पांडे की भेंटवार्ता बहुत अच्छी लगी, सफल प्रस्तुति के लिए बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी से हो रहा है, उसे भी इन्होंने सराहा है। तो पत्र लिखने के लिए हम हमारे श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अगला मेल कौन सा है
1: जी? अगला मेल आया है बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से, विनेश कुमार, रागिनी, श्रीवास्तव और मुस्कान का जी। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा के सफर में आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं। 4 जून को चिट्ठी मिली कार्यक्रम की प्रस्तुति अच्छी लगी, 6 जून को रजनीगंधा कार्यक्रम इन्हें काफी पसंद आया है, अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले तो ये खुश हो गए। साथ ही 7 जून का रायपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा जिसमें दीपक जी ने कल्पना जी से बातचीत की ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, पर ये अंतिम कड़ी थी ये सुन के इनको थोड़ा अजीब सा लगा, क्या ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता ये पूछ रहे हैं। तो हम आपको बता दें ये जो श्रृंखला थी 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा ये आकाशवाणी के 90 वर्ष 8 जून को हो गए, तो उस उपलक्ष्य में ये कड़ी बनाई गई थी, 8 जून को इसकी समाप्ति भी होगी।
0: बहरहाल इनको हम धन्यवाद देते हैं कार्यक्रम इतने ध्यान से सुनने के लिए और मेल भेजने के लिए।
1: बिल्कुल, अगर आप इसी तरह से और इंटरव्यूज सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, आकाशवाणी बिलासपुर के YouTube चैनल पर 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए वो आप सुन सकते हो, तो भूलिएगा नहीं आकाशवाणी बिलासपुर का YouTube चैनल।
0: जी हाँ, न केवल आकाशवाणी के 90 वर्ष के कार्यक्रम बल्कि आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित अन्य कार्यक्रम जिसमें हम डॉक्टर से बातचीत, किसानों के लिए कुछ उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करते हैं, उसे हम श्रोताओं के लिए ही YouTube पर पोस्ट कर देते हैं ताकि वो कभी भी अपनी सुविधा अनुसार सुन सके
1: जी।
0: अब ये मेल आया है, हमारे नियमित श्रोता हैं, भेजने वाले साथी हैं भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर,

0: तुवाराम सूरज बारेकर, नारायण यदु, ये लिखते हैं कि हमें 4 जून का चिट्ठी मिली कार्यक्रम बेहद पसंद आया। सुनील चिपड़े और सुप्रिया जी को बहुत बधाई दे रहे हैं कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। साथ ही 5 जून को सीमा साहू जी द्वारा प्रस्तुत आपकी पसंद कार्यक्रम अच्छा लगा, इसके लिए बधाई। 5 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर जो विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें हरिश्चंद्र वाद्यकार के संग संज्ञा टंडन की बातचीत थी, भेंटवार्ता बहुत अच्छी लगी, पुरानी यादें ताजा हो गई, ऐसा लिखते हैं। साथ ही 5 जून को खुशबू द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम रजनीगंधा बेहद पसंद आया, खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुशबू जी को बधाई। 7 जून को अंतरा जी द्वारा पेश किया गया रजनीगंधा बहुत अच्छा लगा जिसमें अभिनेत्री अमृता राव पर केंद्रित बड़ी सुंदर जानकारी प्रस्तुत की, अंतरा जी को बधाई प्रस्तुत कर रहे हैं। 9 जून के कार्यक्रम के लिए श्वेता पांडे को बधाई प्रस्तुत कर रहे हैं और 10 जून के कार्यक्रम रजनीगंधा के लिए सुजाता राय जी को खूबसूरत प्रस्तुति के लिए बधाई प्रेषित कर रहे हैं।
1: इनको धन्यवाद देते हुए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ जो आया है रसेडा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू का। ये लिखते हैं कि हर सप्ताह चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। ईमेल करेगी सुने ग्राम सभा, युवा जगत, महिला सभा बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ आप मन के गीत कार्यक्रम भी इन्हें काफी पसंद आता है। ग्राम सभा और किसानवाणी कार्यक्रम में खेती किसानी की बहुत उपयोगी जानकारी इन्हें मिलती है, ये काफी पसंद कर रहे हैं। वीरू भैया और राजू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही 5 जून को प्रसारित हर दिल की आवाज आकाशवाणी में पूर्व उद्घोषक श्री हरिश्चंद्र वाद्यकार जी से संज्ञा टंडन जी की बातचीत सुनने को मिली जो काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही 7 जून को विशोक पांडे जी से सुनील चिपड़े जी की बातचीत भी काफी पसंद कर रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन को बधाइयां दे रहे हैं। माटी के स्वर भी पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे गीतों का चयन करने के लिए पुष्पा साव जी को धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। मेल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल मैं पढ़ता हूँ, इसमें भेजने वाले हमारे साथी हैं लच्छनपुर जिला बलौदा बाजार से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। ये लिखते हैं कि 10 जून की सुबह 8:30 पर अमराई कार्यक्रम के अंतर्गत गौतम चंद जैन और मदन मेहर द्वारा प्रस्तुत गीत बहुत ही रोचक, मनोरंजक और प्रेरणादायक लगा। बहुत दिनों बाद इन पुराने कलाकारों का गीत सुनने को मिला जिसे सुनकर दिल गदगद हो गया। बहरहाल इन कलाकारों को हम सभी श्रोताओं की ओर से गाढ़ा गाढ़ा हार्दिक बधाई प्रेषित कर रहे हैं, तो हम भी टुकना टुकना बधाई आपको प्रेषित कर रहे हैं इस सुंदर पत्र के लिए।
1: जी,
0: अगला मेल कौन सा है?
1: ये है ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति जी का। ये लिखते हैं 7 जून को प्रसारित ग्राम सभा कार्यक्रम जिसमें आप मन के गीत सुनने को मिले, हमेशा की तरह अपने दिलकश अंदाज में राजू भैया ने प्रस्तुति की जो काफी लाजवाब लगी। श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्रों को शामिल किए गए और बेहतरीन गीत सुनाए गए। मेल करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल आया है इंदिरा चौक तखतपुर से, भेजने वाले साथी हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल मानस, चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा। ये लिखते हैं कि 4 जून को सुप्रिया दीदी और हमारे प्रिय सुनील चिपड़े भैया द्वारा प्रस्तुत चिट्ठी मिली बहुत लाजवाब लगा, इसके लिए बधाई। 5 जून को बिलासपुर के जिलाधीश श्री संजय अग्रवाल जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के संदर्भ में ज्ञानवर्धक और उद्देश्यपूर्ण बातें बहुत अच्छा लगा। 5 जून को हमारे प्रिय खुशबू दीदी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम रजनीगंधा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर था जो अच्छा लगा। साथ ही 6 जून को रत्ना दीदी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम रजनीगंधा बहुत सुंदर लगा। 7 जून को अंतरा चक्रवर्ती दीदी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम रजनीगंधा दिल को छू गया। 8 जून को हमारे प्रिय मदन पांडे भैया जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने लाजवाब लगा। 9 जून को कार्यक्रम विविधा जिसके अंतर्गत भूजल और पर्यावरण संरक्षण में तालाबों की भूमिका, इस संदर्भ में श्रेयांश बुधिया जी से की गई विस्तार से वार्ता बहुत अच्छा लगा। बातचीत भेंट करता थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन, सफल प्रस्तुति के लिए ढेरों ढेरों बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही 10 जून को प्रिय सुजाता रॉय दीदी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने और रजनीगंधा बहुत अच्छा लगा। तो पूरे कार्यक्रम सुनने के लिए, समीक्षा लिखने के लिए और प्यार भरे पत्र भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, ये कुछ श्रोता ऐसे हैं कि जो हमेशा पत्र लिखते हैं और सारे कार्यक्रम की समीक्षा भी लिख भेजते हैं, तो ये आप जब भी लिखते हो हमें बहुत खुशी होती है, तो आप लिखते रहिए। अगला ये कुछ पोस्ट कार्ड हमारे पास है, ये भेजा है बिरकोना से सनत कुमार कौशिक और रियांश कौशिक ने। ये लिखते हैं कि 1 मई से 31 मई के सभी कार्यक्रम पसंद आए, संज्ञा टंडन जी को हेलो आपकी पसंद के लिए बधाइयां दे रहे हैं, साथ ही शांतनु कपूर और मदन पांडे को हेलो आपकी पसंद के लिए बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 10 साल के बाद पत्र लिख रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत दिनों के बाद आपको हमारी याद आई, हम ऐसा ही बोल सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: पत्र लिखते रहिए और आपका प्यार हम तक पहुँचाते रहिए।
0: एक पोस्ट कार्ड मेरे पास भी है, और इस पोस्ट कार्ड लिखने के

0: का कारण जो हमारे श्रोता ने लिखा है वो मैं पहले पढ़ देता हूं। वो लिखते हैं कि ईमेल में हो सकता है कभी कंप्यूटर की खराबी हो या कभी तकनीकी खराबी हो, यदि ईमेल ना पहुंचे इसलिए मैं पोस्ट कार्ड भी भेज रहा हूं। मतलब ये सावधानी के लिए अलग से उपाय करके भेजे हैं। और भेजने वाले साथी हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। तो आपका पत्र पोस्ट कार्ड हमें मिल चुका है, इसमें इन्होंने कुछ स्टिकर्स भी चिपका है, हाथ से कुछ लिखे भी हैं। तो पत्र भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोनाली जी, दूरियां चाहे जितनी भी हो रिश्ता बना रहता है
1: जी।
0: हर खत में किसी अपने का चेहरा बसा रहता है। आप लिखते रहिए यूं ही दिल की बातें, इसी से हमारा और आपका कारवां चलते रहता है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया महावीर जी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और ढेर सारे पत्रों के साथ आपकी ही बात साझा करेंगे
0: और हमारा कारवां चलते रहेगा। तो कार्यक्रम चिट्ठी मिली को समाप्त करने से पहले हम एक बार पता बता देते हैं
1: जी।
0: हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49, आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 495006,
1: और मेल आईडी है पत्र ईमेल bsp@gmail.com।
0: जी हाँ, तो हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे पत्रों का, आपके ईमेल्स का भी
1: जी। तो तब तक के लिए मोनाली
0: और महावीर को दे अनुमति
1: और स्वीकार करें हमारा नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के जवाब पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली में। प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे और महावीर बरगाह की। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए पंडित भजन सोपोरी का संतूर पर बजाया राग यमन।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भजन सोपोरी का संतूर पर बजाया राग यमन। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, रात के 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 20

0: 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: Peace and stability in the region.
1: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: The visit will provide an opportunity.
5: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
4: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
1: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
6: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
8: गरीब कल्याण

0: योजना जो जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5 5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की।

अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और

चार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 9:15 हुए हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज की आवाज में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गजल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गजल मासूम

0: छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया जाता है, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्ने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मेरा जन्म भी बम्बई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग

0: पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्रीमिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गौला टैंक पे एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी राधर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, ज़िद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रहे हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कौन कौन आते थे?
1: अब्बा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान साहब,
1: और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: हमारा।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पेशी खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नज़ारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नज़र में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जो वो आ जाए तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

वो शाम का ढलना, वो रात का इंतजार, गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोखी वो कयामत, बातों ही बातों में क्या बात हो गई, पलकें क्या झुकी, किस्से हजार हो गई।

हुस्न की शोखी बहारों में है, उनकी आवाज की खनक दिल में दस्तक देती सी जान पड़ती है। क्यों उनसे दिल लगा बैठे, ये फसाना इश्क का जमाने से क्या कहें, पास आके दूर जाने की ये सजा क्या कहें।

जगत भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो, सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

खफा होना भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरे नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज़े दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

मचलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा, दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं, ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना, तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 11 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा

0: विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी

0: दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defense manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting